हर नई सुबह खुली हवा की तरह नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आती है। बीती बातों को पीछे छोड़कर आज को उत्साह और विश्वास के साथ जीना ही सफलता का मार्ग है।

सूरज की पहली किरण यह संदेश देती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। हर नया दिन नई उम्मीद और नई सफलता लेकर आता है।

ईश्वर की भक्ति, अच्छी सोच और निरंतर कर, यही जीवन को सफलता, शांति और आनंद की ओर ले जाने वाले तीन अमूल्य सूत्र हैं। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपके एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून 2026 सुबह के 5:53 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए आपको जानकारी दे दें, आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर चौवालीस मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर का। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

3:10 का समय रहेगा कार्यक्रम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे पानी पर लिखी कहानी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया।

0: प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे

मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नशर होंगे।

0: फलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिकप्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादूनस्थिते भारतीयसैन्य अकादमीत्यस्य 58-उत्तर-100-तम-नियमितपाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैलबीजकृषेः अनुसन्धानाधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नाम्नी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैलबीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन यूयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक

0: क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the 2 northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence टू बाईपास सिक्योरिटी

0: कूल, जिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: मासूम बच्चे शायद इस मजदूरी को अपना नसीब समझ लेते हैं,
1: बिल्कुल सही,
0: और फिर इस तरह से नसीब समझ लेते हैं कि उससे शायद वो दोस्ती कर लेते हैं और उस यारी को निभाने के लिए हर एक हद तक जाते हैं। जब हम आए दिन देखते हैं हमारे बच्चे या तो स्कूल्स जा रहे होते हैं, स्कूल बसेस में हो रहे होते हैं, और जब इन बच्चों की तरफ हमें हमारी निगाह जाती है तो शायद वो उम्मीद भी इन्होंने शायद कहीं ना कहीं छोड़ दी होती है कि एक वक्त ऐसा भी हो सकता था कि हम भी स्कूल जाते, स्कूल यूनिफॉर्म्स में जो है हम भी अपने स्कूल के बस से लेके अपने क्लासरूम्स की तरफ जाते। तो वो जो एक कह सकते हैं कि बचपन में देखे हुए ख्वाब जो है हमने शायद कहीं या गुरबत ने कहीं इनसे वो छीन लिए हैं, और हम बशर्ते इंसान हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं उसमें मिलावट कर दी है, कहीं ना कहीं फ़र्क आ गया है, और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों में और उन बच्चों में तफरीक ज़रूर करते हैं। हम अपने बच्चों को पेंसिल थमा देते हैं लेकिन उन बच्चों को चाय की ट्रे।
1: बिल्कुल जी। और हमने बहुत ऐसे गरीब खानदान भी देखे हैं जहां वालदेन की आमदनी बहुत कम होती है और वो इतने बीमार रहते हैं कि दवाइयों के लिए वक्त पर पैसे मयसर कर नहीं पाते, और इस तरह बच्चों को मजबूरन रोजगार में हिस्सा लेना पड़ता है ताकि घर का चूल्हा जल सके। ऐसे हालात में सिर्फ बच्चा मजदूरी पर पाबंदी काफी नहीं बल्कि हुकूमत और समाज को इन खानदानों की माली मदद भी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही, और जाती तौर ये हर एक इंसान का फर्ज होना चाहिए, बशर्ते इंसान हम अक्सर कहते हैं, और आज जुमातुल मुबारक का खास दिन भी है, और आज हम अक्सर जो है अखलाकियात का दर्स देने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें बात करने की कोशिश करते हैं। तो अखलाकियात हमें यही सिखाती है कि दूसरों का हम दर्द समझे। तो जब ये मासूम से बच्चे नंगे पैर घूम रहे होते हैं या फिर मजदूरी कर रहे होते हैं या फिर भीख मांग रहे होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा जो है एक माफिया भी हम कह सकते हैं। गुर्बत तो बिल्कुल बेहतर है अपनी जगह पे, वो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ऐसा भी है कि इन बच्चों को हम इस्तेमाल भी करते हैं, और हमें शायद कहीं पे लगता है कि यूं मई इंसाफ करते ये मन दिन ज्यादा, तो ये चीज ऐसे
1: तुलान।
0: और आप देखें कि हम किस तरह से मासूम बच्चों का फायदा उठा रहे हैं, और अल्लाह ताला की नजर में ये कितना बड़ा गुनाह होगा कि हम उन बच्चों से काम करवा रहे हैं या उन बच्चों का हक खा रहे हैं, क्योंकि उनसे काम करवाना भी उनका हक है, उनका बचपन छीनना जो है उनके हक की जो है कह सकते हैं कि उनको उनका हक छीनने के बराबर है। तो ये चीज मलहूज नजर रख के इंसान को अपनी इंसानियत पे जरा तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा तो इसीलिए दिया था कि हम दूसरों का दर्द समझे, वो गरीब है उनकी मदद करे जिस तरीके से भी मुमकिन हो, बस उनका
1: अल्लाह ताला ने हमें नाइब मुकर्रर किया था कि वो जमीन पर मेरा काम करे।
0: हाँ बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त पे देख रहे हैं कि हम अपने मफाद के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनसे इनकी वो मासूम सी जो हंसी रहती थी इनके चेहरे
1: वो छीन लेते हैं,
0: और पेछु मसल ये कि यमन बेचारे छन ये तो खबर के ऐसे गसान है ना, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है।
1: बिल्कुल नाजमा, कानून अपनी जगह मौजूद है, सजाएं और जुर्माने भी लिखे हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने से ये मसला हल हो जाएगा? असल सवाल हमारे जमीर का है। कानून तब तक अच्छी तरह से काम नहीं करता जब तक माशरे का जमीर बेदार न हो। ये हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि ये हर एक शख्स का अपना फर्ज होना चाहिए और फर्ज समझ के ही इस बात को आगे पहुंचाना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बेहतर दिल के साथ बनाया था, इस दिल में दर्द रहता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दिल की जमीर की आवाज सुन के उस दर्द को सुन के इन मासूम बच्चों पे भी हम जो है रहम की निगाह डालें, और इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर हो सकते हैं।
1: नाजमा, आज जुमतुल मुबारक, तो आगाज करो इस नातिया कलाम से।
0: बिस्मिल्लाह।

0: जी आप सुन रहे हैं लाइव पैम सुबह। जी हाँ, लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह शबीर अहमद वानी और नाजमा रशीद के साथ। नाजमा, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी लाखों बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। भारत में 14 बरस से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन जुर्म है और खिलाफवर्जी पर सजा हो सकती है। भारत में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर कई इकदाम किए गए हैं। हुकूमत ने प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए आम शहरी और जिली इंतजामिया आपस में जुड़ सकते हैं, जिसकी मदद से बच्चा मजदूरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
1: बिल्कुल, और पहले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मौजूद हैं, और पहले से मौजूद नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत जो है बाजियाब कराए गए बच्चों को खसूसी तरबियती मराकज में लाया जाता है, जहाँ उन्हें वजीफा दिया जाता है, सेहत की देखभाल होती है और मुफ्त तालीम देकर उन्हें स्कूल भेजा जाता है। ये बात हो रही थी NCLP यानी कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट की, जिसके तहत हम बात कर रहे थे कि जो हमारे बाजियाब माजरत किए गए जो बच्चे हैं उन्हें उनकी उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें स्कूल भेजा जाता है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि उन्हें काउंसलिंग दी जाए और जिस तरीके से भी मुमकिन हो उन्हें जो है उनकी हाथों में कलम दी जाए, उनके हाथों से वो जो चाय की ट्रेज हैं उनके बदले जो है उन्हें
0: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के इश्तराक से भारत में चाइल्ड लेबर प्लेटफॉर्म CLP प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका मकसद जरी और दीगर सनती सप्लाई चेन से बच्चा मजदूरी का खात्मा करना है। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पोर्टल के शिकायत के डाटा के मुताबिक भारत में चाइल्ड लेबर का 50% से ज्यादा सिर्फ 5 रियासतों में मरकूज है।
1: और यहाँ पे भी अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी बहुत से मामलात देखे गए हैं चाइल्ड लेबर के, वक्तन फवक्तन जो है इस बात पे आगाही भी पहुँचाई गई है, लेकिन बात वही आती है कि हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, हर बच्चे को जो है तालीम दी जाए, तालीम यकीनी बनाया जाए, उनकी बच्चों से जो है मशक्क़त लेने की हौसला शिकनी हो और वालिदैन और माशरे में ज़रा हम आगाही पैदा करें और कोशिश करें कि बच्चों के हकूक का हम एहतराम करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, बच्चों के हाथों में उनकी तकदीरें हैं और उनकी तकदीर अच्छी हुई तो हमारे मुआशरे की तकदीर भी इंशाल्लाह अच्छी ज़रूर होगी।

स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर नश्रों का सुबह 8:45 पर आज के प्रोग्राम का मौजू है क्या नाबालिग बच्चों के लिए वसी बनाना दुरुस्त है। मुकर्रर हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह के 9 बजे। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी, उनकी तालीमात और कलाम से मुतलिक सिलसिलावार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खदमत होगा सुबह के 10 बजे। आज के प्रोग्राम में मारूफ सूफी शायर फकीर अब्दुल करीम से मुतलिक बात होगी, तहरीर फारूक फैयाज की है। पैगाम सुबह की नशरियात में सुबह 10:30 पर हमारे

मान होंगे पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड लायर सईद मुश्तबा। फारूक अहमद गनाई और साथियों की आवाजों में आप छकरी और रूह समाध करेंगे सुबह 11:30 और दिन में 2:30 पर। इनसे आप कलामी लाल आरगे में और कलामी अफजल वन समाध करेंगे।

बस्म ने स्वास्थ्य की दोपहर 12:40 पर आज के प्रोग्राम में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के मौजू के तहत गुफ्तगू होगी। मेहमान हैं एडवोकेट सोहेला, प्रोग्राम की मेजबान हैं साइका तबस्सुम। एनसीईआरटी का तैयार करदा तालीमी स्पॉन्सर प्रोग्राम नष्ट होगा दिन में 1:10 पर। सपहर 3 प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4 नष्ट होगा। पंजाबी प्रोग्राम पेश होगा सपहर 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम आप शाम के 5 सुनते हैं।

मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री

0: नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है।

0: जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवम्बर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोक सत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
3: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो, पयामे सुबह,
2: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
3: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुबह
4: यारो वन।
2: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
3: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुबह
5: सुनो सजना,
3: पयामे सुबह।
6: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.81 मीटर पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग लाइव शो पयाम सुबह, शबीर अहमद वानी और मेरी साथी नाजमा रशीद के साथ।
7: बिल्कुल, पयाम सुबह जहां पे हम सेहत की बात करते हैं, साइंस, स्पोर्ट्स, अवामी मसाइल की बात करते हैं, अपडेटेड रखते हैं अपने सुनने वाले दोस्तों को, यानी कि पूरा एक पैकेज है और ये पैकेज आप तक पहुंचता है हर दिन हर सुबह 7:10 से लेके ठीक 11:30 तक।
6: नाजमा, आज 12 जून है, आइए आज के दिन को तारीख के अवराक में जान कर देखते हैं और जानते हैं कि माजी में इस दिन

0: जुलाई तक खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में सन 2026 जो है तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनने जा रहा है। इस में दुनिया भर से 48 टीमें शिरकत कर रहे हैं। टूर्नामेंट में मजमूई तौर 1248 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मुश्तरक मेजबानी में होने वाले इस फुटबॉल आलमी कप में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल होंगी, जबकि इवेंट के दौरान मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे और फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 357 खिलाड़ी इससे कबल भी फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुके हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार्स लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आलमी कप इस वक्त जो है आज का जो वर्ल्ड कप है अपने करियर का 6ठा आलमी कप खेल रहे हैं। जी
1: बहुत खूब। और आज से आईसीसी वुमेन्स टी20 आलमी कप भी शुरू हो रहा है। इस मेगा इवेंट में 12 टीमें शामिल होंगी जिन्हें 2 ग्रुपों में

आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग लाइव शो पैम सुबह। नजमा, फुटबॉल आलमी कप कल से शुरू हुआ है और ये टूर्नामेंट 11 जून से 19

0: Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मुतनवे सप्लाई निजाम और बैन अलाक्वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। एक अहम वाकये में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मस्कूरा मुफाहमत नामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

0: है वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसायल को मुल्क के लिए बरूए कार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला ने फ्यूरियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निज़ाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शनाख्त तैयार करने के लिए AI का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मस्कूर एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखादही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतालिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राबते कायम करते हैं। ये अनासर लोगों के चेहरे से मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूमकर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को यह सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाएं और सार्फिन को शामिल करने के निजाम को वसत दें। लोगों से भी जोर देकर यह कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डाटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई और टकराव के असरात से निमटने के लिए मजबूत और मतनव सप्लाई निज़ाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अवी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जुग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम वक्त और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है।
3: पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत में मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों का अहम रोल रहा है। इस अरसे के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बनाने की समत सरकार की जानिब से किए गए इकदाम की बात कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल के दौरान भारत एक मजबूत आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह वो जुरतमंदाना इकदाम हैं जो अजाइम को अमल से जोड़ते हैं। वज़ीरे आज़म की क़यादत ने उन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ये बात यकीनी हुई है कि भारत की आवाज़ आलमी प्लेटफॉर्म पर गूंजे। भारत ने मुल्क मुकदम के

0: को सबसे ऊपर रखते हुए खारजा पॉलिसी में नई तवानाई फूंकी और अपने पुराने ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ नए दोस्त भी बनाए। भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी खास बात कोविड-19 बहरान के दौरान सामने आई, जब उसने अपनी इंसान दोस्त सिफारतकारी के सबूत के तौर पर वैक्सीन मैत्री इकदाम शुरू किया। जनवरी 2021 से भारत ने 99 ममालिक और अक्वाय मुत्तहदा के दो इदारों को 30.12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फराहम की। बांग्लादेश में मुकीम फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर डॉक्टर ज्योतिष को बिस्वास ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से वैक्सीन की तेज रफ्तार तरसील खैरसगाली का एक गहरा मुजाहरा था। उन्होंने भारत, उसकी हुकूमत और उसके अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निमटने के ऑपरेशंस भारत की आलमी शमूलियत का एक अहम हिस्सा रहा है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के मशरकी साहिल पर तूफान दित्वा आया, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक, हजारों बेघर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस होकर रह गया। श्रीलंका के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भारत ने श्रीलंका को फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और आफात से निजात फराहम करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। भारत ने 1000 टन से ज्यादा इमदादी सामान पहुंचाया, जिसमें खुश्क राशन, खेमे, तिरपाल, हाइजीन किट्स, कपड़े, पानी साफ करने वाली किट्स और तकरीबन 4.5 टन अदवियात और सर्जिकल आलात, इसके अलावा 60 टन खसूसी साजो सामान शामिल था। भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाबाजी के नायब वजीर जमित रोवान कदी थुकुव ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के साथ बेपनाह गर्मजोशी और यकजहती का मुजाहरा किया है। पिछले 12 साल में भारत ने वैक्सीन मैत्री और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे मौसर इकदामात के जरिए एक आलमी रहनुमा के तौर पर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में बेशरफ का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में बेशरफ हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्ना बॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय सुबह के 9 बज रहे हैं।
1: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां। सुर्खियां सुर्खियां
0: समय आज जुम्मतुल मुबारक है। 26 जिलहिजा 1448 हिजरी मुताबिक 12 जून सन 2026 ईस्वी। मुकामी रोजनामों की सुर्खियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी और मेरे साथ है मेरी साथी नाजमा रशीद। एक अखबार की सुर्खी है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर, आज सुबह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने का इम्कान। श्रीनगर में आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ और आला सिक्योरिटी पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत का इम्कान। 57 रोजा सालाना अमरनाथ 2026 के लिए सिक्योरिटी इकदाम और यात्रियों के लिए सहूलियात का जायजा।
2: जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा और अंग्रेजी रोजनामे के मुताबिक ये खबर, इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूज अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी।
0: 257 थानों की निगरानी के लिए सीनियर पुलिस अफसरान बतौर सरपरस्त तैनात, विकसित भारत 2047 के तहत पुलिसिंग में बेहतरी के लिए हर थाने को मिला निगरान अफसर। डीआईजी और एसपीज तक 257 अफसरान एक एक पुलिस स्टेशन अपनाएंगे, अवाम दोस्त पुलिसिंग पर जोर।
2: जी, अंग्रेजी अखबार मेरे पास लिखते हैं, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स फॉर सेकेंड डे, तेहरान टारगेट्स यूएस बेसिस इन वेस्ट एशिया, इंडिया रेजेस कंसर्न्स आफ्टर स्ट्राइक्स हिट थर्ड शिप कैरिंग इंडियन सेलर्स, हॉर्मुज टेंशंस डीपन। इसी अखबार से और एक सुर्खी इसी हवाले से लिखते हैं, ट्रंप कॉल्स ऑफ लेटेस्ट थ्रेट्स टू स्ट्राइक ईरान, सेज प्रोग्रेस इन नेगोसिएशन, थ्री मिसिंग इंडियन सेफरर्स ऑन बोर्ड एम टी सेट बेलो कन्फर्म्ड डेड, सोनोवाल।
0: मेरे हाथ में एक अखबार है, इसकी सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में वजीर अजम मोदी से मुलाकात, रियासती दर्जे की जल्द बहाली और सियाहत को फरोग देने समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल, वजीर अजम को दफ्तर में 12 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देकर जमहूरी तारीख में अहम कामयाबी दिया करार।
2: चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कॉल्स ऑन पीएम मोदी, सीक्स अर्ली स्टेटहुड रेस्टोरेशन।

0: जोन का श्रीनगर में अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट 2026 की इख्तामी तकरीब से खताब, कौम की तामीर में नौजवान किसी से पीछे न रहें, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी से जम्मू कश्मीर यूटी में हॉकी को मकबूल बनाने में मदद मिली, मनोज सिन्हा।
1: Only Allah knows. Farooq Abdullah, on return of Jammu and Kashmir's special status, won't invite anyone to join Delhi protest. Those interested can participate.
0: मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है, इसकी सुर्खी है, इक्विटेबल डेवलपमेंट एट कोर ऑफ गवर्नमेंट्स एजेंडा, सकीना यतु इनॉग्रेट स्टेट ऑफ आर्ट लेप्रोस्कोपी यूनिट एट एसडीएच मागाम।
1: जी, अंग्रेजी अखबार से ये खबर लिखते हैं, नाई ट्रैफिक कर्ब्स ऑन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे फॉर रोड रीअपेयर। लिखते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट टू रिमेन सस्पेंडेड ऑन जून 12, जून 14, जून 16 नाइट्स।
0: फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आस्क्ड टू स्पीड यूपी एफआरए क्लेम प्रोसेसिंग, राणा मीट्स डेलीगेशन रिव्यूज वाटर ट्राइबल वेलफेयर इश्यूज।
1: जी, अंग्रेजी अखबार से ये खबर जरा लंबी है लेकिन गौर तलब। लिखते हैं, ओवर हाफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बर्थ्स बाय सी सेक्शन फार अबाउ नेशनल एवरेज, 51% ऑफ बर्थ्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर बाय सीजेरियन सेक्शन, नियरली डबल द नेशनल एवरेज ऑफ 27.2%। सी सेक्शन रेट रोज फ्रॉम 41.7% टू 51% इन 5 years। 93.6% ऑफ डिलीवरीज ऑकर इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, अमंग द हाईएस्ट रेट्स इन India. Over 80% of institutional deliveries take place in public hospitals, yet C-section rates remain very high. LD Hospital, Laladad Hospital, recorded 71% cesarean deliveries in 2025-2026.
0: मेरे हाथ में एक उर्दू अखबार है, इसकी सुर्खी है, भारत गैर यकीनी आलमी हालात के बावजूद तरक्की की राह पर गामजन है, नीति आयोग इजलास मुनक़द, विकसित भारत के हदफ के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी।
1: जी, राजौरी फायर क्राइसिस, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ फियर्ड, मेनी एनिमल्स रेस्क्यूड इन राजौरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑन टोस, रिपोर्ट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्टिंग हैबिटेट्स, फॉरेस्ट फायर कंटिन्यूज ऑन LOC रिट्स, लोकल सेव हाउसेज फ्रॉम फ्लेम्स।
0: ये जंग का दौर नहीं, आलमी तनाजात के हल के लिए मुजाकरात और सफारतकारी वाहिद रास्ता, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जरूरी, आलमी मसाइल का हल बातचीत में है, वजीर खारजा जयशंकर।
1: जम्मू सैनिटेशन वर्कर्स पोस्टपोन स्ट्राइक फॉर 15 days, थ्रेटन नो वर्क फ्रॉम जून 24 इफ डिमांड्स नॉट कंसीडर्ड।
0: एक अखबार की सुर्खी है, फसल बीमा स्कीम जेर अमल, किसानों को जल्द नजरसानी शुदा पॉलिसी से फायदा मिलेगा, मौसमी फसल बीमा स्कीम के निफाज में पेशरफ्त, मरकजी पॉलिसी के 22 आर्जी ताखीर, वजीर ज़राअत।
1: जी, लिखते हैं, इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 27, वर्ल्ड बैंक।
0: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, गवर्नमेंट रिव्यूज रूरल स्कीम्स, पुशेस फास्टर कवरेज, 8.10 लाख हाउस होल्ड कवर्ड अंडर उम्मीद, 3.24 लाख हाउसेज बिल्ट।
1: गोल्ड स्लम्स ₹2100 टू ₹1.53 लाख 10 ग्राम, सिल्वर ट्रेडर्स फ्लैट इन दिल्ली। साथ में लिखते हैं, रुपीज स्लम्स 60 पैसा टू क्लोज एट 95.85 अगेंस्ट US डॉलर।
0: अमेरिका के दो भारतीय बहरी जहाजों पर हमले, 3 हिंदुस्तानी बहरी अहलकार हलाक, भारत का शदीद एहतजाज, अमरीकी नाजिम अमूर वजारत खारजा तलब।
1: जी, मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा ही इसे सुर्खी पहुंचाते हैं सुनने वालों तक। लिखते हैं, वंदे भारत हॉल्ट एट अनंतनाग स्पार्क्स ऑप्टिमिज्म ओवर टूरिज्म ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, फुलफिल्स डिमांड ऑफ साउथ कश्मीर रेसिडेंट्स, सेंटर अप्रूव्स वंदे भारत हॉल्ट एट अनंतनाग, लॉन्ग पेंडिंग साउथ कश्मीर डिमांड फुलफिल्ड, मोर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रेड।
0: समय सुर्खियां जारी है, हमारे साथ बने रहिए।
2: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
4: आकाशवाणी

0: श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुब,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
0: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुब
2: यारो वन बारियारो वन।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
0: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पयामे सुब
3: सुनो सजना,
0: पयामे सुब।
4: वक्फे के बाद सुर्खियों में आपका फिर से खैर मकदम है
5: जी। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा लिखते हैं, क्लैमर ग्रोज फॉर री ओपनिंग ऑफ कश्मीर्स नायग्रा फॉल्स एज अहर्बल बिजनेसेस सफर।
4: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, वादी में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिशें, जम्मू में तेज आंधी के बाद शदीद बारिश।
5: गवर्नमेंट टू फिल टीचर वैकेंसीज, शिफ्ट स्कूल्स फ्रॉम रेंटेड बिल्डिंग्स इन फेज्ड मैनर। सकीना एतू सेज हॉस्पिटल्स नीड डॉक्टर्स, स्टाफ एंड इक्विपमेंट, नॉट जस्ट रिबन कटिंग सेरेमनीज।
4: फिरोजपुर नाला की हालत अबतर, किसान शदीद आबी बहरान का शिकार, क्यूम वानी।
5: जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम्स फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपायर जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज WPRs।
4: तरक्याती कामों में शफाफियत और सख्त निगरानी, नागुजीर जावेद बेग
5: जी। और इसी अखबार पे और एक सुर्खी लिखते हैं, फोक सिंगर उस्ताद गुलाम नबी बुलबुल रिमेम्बर्ड ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी।
4: मेरे हाथ में एक उर्दू अखबार है, इसकी सुर्खी है, उर्दू निसाब की बेहतरी और तजदीद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अहम वर्कशॉप मुकम्मल।
5: रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्मार्ट बस सर्विस इन पुलवामा विलेज।
4: एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इंस्पायर्स वर्ल्ड PM।
5: DC Anantnag reviews arrangements for NEET UG 2026, stresses adherence to SOPs guidelines.
4: शुमाली मगरबी हिंदुस्तान में तेज बारिश का इम्कान, 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, आंधी तूफान और जालाबारी। मानसून में ताखिर के बाईस मुंबई के आबी जखायर 12.49% पर पहुंच गए।
5: विल रिमूव AFSPA फ्रॉम एंटायर नॉर्थ ईस्ट बारिंग वन और टू स्टेट्स नेक्स्ट ईयर, अमित शाह।
4: मेरे हाथ में एक अंग्रेजी अखबार है, इसकी सुर्खी है, JKRTC employees to get 7th pay commission scales।
5: जिसका खदशा था वही हुआ, मौसम की खौफनाक अंगड़ाई से नुकसान, तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, छतें उड़ गई और कश्तियां हिचकोले खाने लगी।
4: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, सालाना 25,000 ग्रेजुएट सिर्फ मगर सिर्फ 13% अफरादी कोत का हिस्सा, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार का बहरान, बेरोजगारी 6.7% तक पहुंच गई।
5: भारत ने अपनी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा, मोदी नौजवान विकसित भारत के सफर में सबसे बड़ी कुव्वत साबित होंगे। इसी अखबार से और एक सुर्खी लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में हॉकी के खेल में गैर मामूली तब्दीली, LG श्रीनगर के अपोलो ग्राउंड में अल्फा हॉकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तकरीब में शिरकत।
4: समय नहीं थी आज की सुर्खियां, हमें इजाजत दें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनके साथ जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के अलावा इक्तिसादी और तरक्याती मामलों पर बात करके तरक्की, राबताकारी, रोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए मरकज का लगातार ताउन तलब किया। वजीर आला ने रियासती दर्जे की बहाली के बारे में आवाम की उमंगों को खासतौर पर वजीर आजम के सामने रखा और इसकी जल्द बहाली पर जोर दिया। इस दौरान वजीर आला ने कौमी राजधानी में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में भी शिरकत की, जहां उन्होंने रोजगार, सियाहत, बुनियादी ढांचे और तरक्याती तरजीहात को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलकूद के शोबे में सरमायाकारी इस शोबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ खिलाड़ियों को बेहतर मौके फराहम करने में मददगार साबित हो सकती है। श्रीनगर में अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ी खेलों के शोबे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं।
1: अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली हैं उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूँ ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सके। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।
0: जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबाली उमूर के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत मुआशरे के हर तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। वो इनसे मिलने आए जो मुख्ते के कई वफूद से बात कर रहे थे। वजीर मौसुफ ने महकमा जल शक्ति के अफसरों को जमीनी सतह पर जायजा लेकर आवाम के लिए पीने के साफ पानी की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। किसानों के बहबूद से मुतलिक जे एंड के मशावरती बोर्ड के अहतमाम से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के कैंपस में तरक्की पसंद किसानों के लिए एक रोजा तरबेती कैंप मुनक्द हुआ, जिस दौरान किसानों को काश्तकारी की जदीद और साइंसी तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को यूनिवर्सिटी रवाना करने के मौके पर ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि फसल बीमा स्कीम सरकार के ज़ेर-ए-गौर है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,

0: जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं, इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशन होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेके जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड में ही उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
1: डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जितिन किशोर ने एक मीटिंग के दौरान मिशन युवा की पेशरफ्त का जायजा लिया और इस स्कीम के तहत मौसूल होने वाले कर्जे की दरख्वास्तों की मंजूरी के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लेने की गरज से जिला सतह की अमलावरी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को हिदायत दी कि वो केसों की मंजूरी की रफ्तार

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम चुप्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून

0: मजदूरी में लग जाते हैं। सो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हमारा तालीमी शोबा हो, चाहे हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट हो, या और भी इदारे जो खुसूसन बिलखुसूस इस बच्चे के लिए बने हैं, जैसे हर किसी स्टेट में या यूटी में हमारे स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज हैं, उनका ये लार्जर मैंडेट है कि ये इन जैसे बच्चों को देखें कि आया कि ये बच्चे क्यों बच्चा मजदूरी में लग जाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और इक्तिसादी लेवल पे क्या है कि अगर मैं कोई फैक्ट्री चलाता हूँ या मेरी कोई ऐसा बड़ा कोई वेंचर है, मैं इतना अब लाइक मादा परस्त बन गया हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एडल्ट को एंगेज करूँ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, मैं उसको 500 या 600 रुपए देता हूँ, बट इस बच्चे को एंगेज करके मैं इसे सुबह 8 बजे ही एंगेज करता हूँ, रात को देर वहाँ रुक के इसको छोड़ देता हूँ, फिर 100 रुपए या 150 में वही काम कराता
1: हूँ।
0: सो मॉरली जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनको ज्यादा अवेयरनेस कराने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एक सिंपल एक्ट की वजह से इस बच्चे का हम बचपना छीनते हैं।
1: हम चूंकि अखलाकियात पे आज बात करते हैं और आपने जो ये मौजू छेड़ा, ये बहुत परेशान कुन बात है कि बच्चा शिकायत नहीं कर पाता, शिकायत करे भी तो कहां करे, उसे इल्म नहीं होता या फिर सुने भी कौन, और नतीजा ऐसा होता है कि हम उसको कम एवज में बहुत मेहनत कराते हैं, और ये तो एक अखलाकी बहरान ही हम समझेंगे। अच्छा, हम इस पे तो बाद में आएंगे, लेकिन आपसे यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, एक हुआ कि हमें गुर्बत का मसला है इस बच्चे को, तो गरीबी के तहत वो इस काम में आ रहा है और मजदूरी कर रहा है चाहे किसी भी सूरत से हो। दूसरी बात ये होती है कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि घर का जो खर्चा है जरा बट जाएगा तो चलो बच्चे को पढ़ाई क्यों करानी है, तो डाल देते हैं, और बाज औकात जब उनसे बात करते हैं उनका ये कहना होता है कि हम बच्चे को हुनर सिखा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से इसमें तफरीक करेंगे, और साथ में हमें इसका जो उम्र का तकाजा है वो भी अगर आप समझाएं तो बहुत बेहतर रहता।
0: देखिए, मैं यहाँ पे वाजे करना चाहूंगा कि कानून अगर हम बैन अक्वामी सतह पे बात करेंगे, बच्चा हम उसको कहेंगे जो 18 साल से कम हो, बट जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं वहां पे इस बच्चे की जो डेफिनेशन है वो अलग मुनफरिद है। वहां पे चाइल्ड लेबर की जो लेजिस्लेशन है वो हमसे मुराद करती है कि वो भी हम उसको बच्चा कहेंगे जो 14 साल से कम हो। मैं कैटेगोरिक आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि बिलो 14 ईयर्स से हम किसी बच्चे को किसी भी काम में एंगेज नहीं कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे हम कुछ डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं, जैसे कालीन, यहाँ पे हम कालीन का काम
1: कालीन बाफी बिल्कुल,
0: या कुछ और भी जो डोमेस्टिक अपने हाउस होल्ड में ही करते हैं, वहां पे फिर कानून ये भी कहता है कि 14 साल के बाद जब ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, अब ये इसकी ट्रांजिशन हो गई है एडोलसेंट में, अब ये माँ बाप को हेल्प कर सकता है। हेल्प ये कि वो जब वो स्कूल से आए फिर शाम तक अगर 2-3 घंटे हैं, ब्रेक्स में आप उनको समझाइए
1: जी,
0: अगर 1 घंटा एंगेज करना है, मैं तो ये कहूंगा कि 3 घंटे में आप इसके 1 घंटा ले सकते हैं, तो वहां पे विद इन द ब्रेक्स, सो दैट कि ये हुनर भी सीखे, क्योंकि हमारे वो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं कि जहां पे आप बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दीजिए,
1: स्किल्स दें, बिल्कुल,
0: तो यहाँ तो माँ बाप खुद ही किसी, जैसे यहाँ हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स के हाउसेस भी हैं, तो वहां पे इस बच्चे को हम एंगेज बाजार तक कर सकते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि कोई भी ऐसा कारोबार हो जो हैजार्डस हो, हजार्ड्स आई मीन टू से कि हम बीड़ी बनाने के काम में आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे बच्चों को एंगेज किया जाता है, वो इस बच्चे के हेल्थ के अगेंस्ट हो सकता है, बट ऐसी छोटी मोटी चीजें जो इसके हुनर में इजाफा कर सकते हैं, कल की डेट में जब ये एक अडल्ट हो सकता है ये खुद भी एक अच्छा सा वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है
1: जी। तो इसमें क्या अकसाम हो सकते हैं, जैसे आपने अभी बात की कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे बच्चे की नशोनुमा को खतरा हो सकता है, तो किस किस किस्म का चाइल्ड अब्यूज हो रहा है यहाँ पे, या किस तरीके से हम बता सकते हैं कि बच्चों को किस किस तरीके से चाइल्ड लेबर में धकेला जा रहा है।
0: पूरे हिंदुस्तान में मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ डेटा वादी कश्मीर में हमारा चाइल्ड लेबर नहीं है।
1: अच्छा,
0: वादी कश्मीर में लाइक वी हैव कि जैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स में हमारे बच्चे हैं, बट ओवरऑल जो डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे यहाँ नहीं है,
1: बट यहाँ के जो लोकल्स है वो नहीं है,
0: बट ऐसा भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं हो रहे हैं, अगर वो यहाँ के बच्चे नहीं है, बट फॉर मी वो पूरे हिंदुस्तान के या किसी

0: और मुल्क के बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए छोटे छोटे बच्चों को थ्रू एजेंसीज लाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये मैं चाहे लेबर के जुमरे में नहीं लाऊंगा, मैं तो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुमरे
1: में आ जाता है।
0: तो हमें इस बात को भी उजागर करने की जरूरत है। आज यही दिन हमसे तवक्को भी करता है कि बहुत आला अफसरान भी है या बड़े बड़े लोग भी हैं जो इस चीज़ के आलमबरदार भी हैं और दावा भी करते हैं, बट जब हम उनके घराने को देखते हैं, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एंगेज किया है, उन जैसे लाइक एजेंसीज पे इदारों को नजर रखने की जरूरत है, तो वो हम आए दिन देखते हैं। दूसरा ये कि हमने यहाँ बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि जिनका रिहेबिलिटेशन बाज़ाब्ता तौर नहीं हो रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा है, पांच मिनट के लिए एग्जाम्पल के तौर में कहना चाहूंगा कि कोई ओडिशा का बच्चा यहाँ पे हम पाते हैं, उस बच्चे की रिहेबिलिटेशन हम कश्मीर में नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ एक प्रोविजन है कि या किसी और स्टेट में भी वो इस बच्चे को उठा के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखते हैं। इनका कल्चर अलग है, रीजन अलग है, ज्योग्राफिक लैंडस्केप अलग है, बट कानून हमसे ये तवक करता है कि इन इदारों को, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो या कोई ऐसा इदारा हो, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसरान हो, उनको ये बाज़ाब्ता इसका दरियाफत करना है कि ये बच्चा किस रियासत से बिलोंग करना है। तो वहां तक इस बच्चे को वापस लेना है। इस बच्चे को जब हम वापस अपने घर को दाखिला कराएंगे तो उस चीज को मैं रिहैबिलिटेशन का नाम देता हूं, बनस्बत इसके कि हम इस बच्चे को कश्मीर के किसी भी कोने से उठा के उस डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखना। वो एक आरजी रिहैबिलिटेशन हो सकती है अंटिल कि हम इनके माँ बाप को अच्छे से आइडेंटिफाई करें, सो दैट इनको वहां तक वापस, सो दैट इज द रिहैबिलिटेशन जो कानून हमसे चाहती है।
1: जी, हम अंदाजा लगा पाते हैं जब हम इन प्यारे से छोटे से बच्चों को देखते हैं काम करते हुए, उनके नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथ जो है वो काले पड़ चुके होते हैं काम करके, मजदूरी करके, लेकिन आप जरा ये भी सोचें कि उनके जहन पे क्या असर होता होगा। यदि हम उम्र शुर आसन विछान स्कूल अनगसान या फिर उनके पास टॉयज होते होंगे तो क्या जहनी असर होता होगा। खैर, इस हवाले से हम और तफसीलन बात करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे एक नगमे के लिए रुकना पड़ेगा। ये नगमा सुनेंगे, नगमे के उस पर बातचीत का सिलसिला आज के खास मेहमान से जारी है।

0: हैं, बट एक चीज़ है कि हमने इस चीज़ में एक इमेजिनेशन रखनी है। हमने यहाँ ऐसे बच्चे भी देखे हैं, सॉरी यहाँ पे ऐसी फैमिली भी देखी है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने किसी और बच्चे को
1: हायर
0: किया
1: है। जी
0: इमेजिन आप अपने बच्चे की नशोनुमा कैसे चाहते हैं, बट उसके नशोनुमा के लिए आप किसी और के बचपने को ऑन स्टेक रखते हैं। ये एक बड़ा सा एक मॉरल और रिलीजियस करप्शन है हमारे दिमाग में। इस पे हम पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आपका जब का आप खुद का एक जमीर नहीं जागेगा, आप अपने बच्चों को किस लेवल की नशोनुमा देना चाहते हैं, बट यहाँ से आप किसी और बच्चे को एंगेज कराना चाहते हैं। तो ओवरऑल जहां जहां से भी ये चाइल्ड लेबर के इश्यूज हैं, उन इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। देखिए हम जब मैं बात कर रहा था कि आइसोलेशन में हम नहीं दे सकते, यहाँ पे हमारा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। ऐसा होना चाहिए था, आम लोगों के दिमाग में ऐसे भी बात आती है कि इट शुड बी राइट टू फ्री एजुकेशन, या कंपल्सरी वर्ड क्यों रखा गया है, सो दैट कि ये बच्चा बिलोंग करता है स्कूल को।
1: जी
0: तो एक तो फ्री एजुकेशन भी हो, दूसरा ये कंपल्सरी भी बनाया है लेजिस्लेशन ने, सो दैट कि इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस स्कूल में आप हो इसकी विसिनिटी में आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं, क्या वो सब एनरोल है। इसमें भी और एक चालाकियां ये लोग करते हैं कि हाउस होल्ड में इनको रख के किसी नियरेस्ट स्कूल में इनको एंगेज कराते हैं।
1: अच्छा।
0: उनका एडमिशन होता है।
1: ओके, नाम का एडमिशन।
0: नाम का एडमिशन, फिर वहां की अटेंडेंस पे अगर आप देख लीजिए उनको बाजाबते प्रेजेंट पे रखा जाता है। यहाँ पे मैं आज के दिन पे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये मुद्दाना गुजारिश करूंगा कि आप इन जैसे स्कूल पे इंस्पेक्शन कीजिए, क्या वाकईतन ये बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनके इहाते में कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, वहां पे ये बच्चे एनरोल हैं बट वो नहीं जाते हैं। तो ये एक फुकदान है। दूसरा ये कि शायद हम ये एक आर्ग्यूमेंट ये भी चलता है कि अगर हम इनको रोटी कपड़ा और मकान नहीं देंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे।
1: जी
0: तो इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इदारे रखे हैं। अगर किसी का किसी के माँ बाप का इक्तिसादी वो हैसियत नहीं है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस उतना नहीं है, बट गवर्नमेंट ने एक स्पॉन्सरशिप स्कीम रखी है, इनको जाना चाहिए, इनके माँ बाप को जानना चाहिए। पहले इस चीज की नॉलेज तो हमें प्रोवाइड करनी है कि हर कोई बच्चा जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो, इससे मुराद मेरी ये है कि कोई भी बच्चा जो किसी भी मदद का तलबगार हो, चाहे उसके माँ बाप मेंटली फिट ना हो, चाहे उसके माँ बाप इक्तिसादी तौर पे फिट नहीं हो, या उनके माँ बाप भी नहीं हो सकते हैं, सिंगल ऑर्फन हो सकते हैं, डबल ऑर्फन हो सकते हैं, या किसी नेचुरल क्लाइमेटी के वो शिकार हो गए हैं, डिजास्टर के शिकार हो गए, वहां पे इनको नियरेस्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाने की जरूरत है। और स्पॉन्सर की शिप एक स्कीम है जहां पे इस बच्चे को महाना 4,000 रुपए भी मिलते हैं। बच्चे के लिए 4,000 महाना, ये उसके एजुकेशन को भी देख सकता है, वो उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स को भी देख सकता है, वो उसके फिजिकल नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है। गर्ज ये है कि हमें लॉ, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम इस चीज को डील नहीं कर सकते। और इससे ऊपर हमारा जो सोशल नॉर्म यहाँ पे हुआ करता था कि वो हमारे जो बड़े थे वो कोई भी ऐसी कोई चीज देखते थे बच्चों के खिलाफ, वो अपनी चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग करते थे तो पंचायत में डिस्कस करते थे, अगर अर्बन से तो पुलिस को रिपोर्ट करते थे। मैं सबसे मोदीबाना गुजारिश करता हूँ कि बच्चे से उसका बचपना जब हम छीनते हैं उसमें बच्चा कभी भी शिकार, डायरेक्टली शिकार तो हो रहा है बट मुलवस
1: हम सब
0: हैं। सो एडल्ट पॉपुलेशन को इस चीज की जिम्मेदारी है, बच्चे को जिम्मेदारी
1: उसकी, कसूरवार हम सब हैं। बिल्कुल बच्चा आपने फरमाया कि पहले अगर कभी कहीं पे कुछ भी होता था मोहल्ले में, समाज में, तो हमारे बड़े जो है सामने आके जिम्मेदारी ले लेते थे कि इसका हमने जो है अजाला करना है, या फिर ये चीज बड़ी रहती थी यहाँ पे कि कहीं पे कुछ गलत देख लिया तो उसको रोकने की कोशिश। आज जो हमारे मुआशरे में ये चीज हुई है कि मैं क्या गसान छू, तो मैं क्या, तो इससे मैं क्या कॉन्सेप्ट छू, खुदा ने खास ये हमारे घरों तक पहुंच गया। आप ड्रग अब्यूज का ही देख लें, इतना कुछ आगे बढ़ गया है यही आनाकानी करने से। खैर, ये तो उन बच्चों की बात हो गई जो उनको यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए कि वो आ गए डोमेस्टिक हेल्प में वगैरह। हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं सड़कों पर जो भीख मांगते हैं, क्या इसके अल्लाह तुम्हें दिल तो थोड़ा बड़े हुए तुम।

0: जी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट सैयद मुश्तबा साहब से, जो कि चाइल्ड राइट्स लॉयर हैं। हम बात तो कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों का जो अखलाकी फ़र्ज़ है वो हम अदा कर सकते हैं। अच्छा, वालिदैन पे सबसे पहला फ़र्ज़ जो है, अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो वालिदैन पे सबसे पहला फ़र्ज़ ये आयद किया गया है कि आप अपने बच्चों का बहुत प्यारा सा नाम रखें। और हर एक जो कपल रहता है, वालिदैन रहते हैं, उनकी यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा नाम बोला जाए। लेकिन जब यही बच्चे चाय की टपरी पे चाय देते हैं लोगों को या फिर ऐसा काम करते हैं, तो छोटू छोटू करके इन्हें बुलाते हैं। और यकीन जाने बहुत अफसरदा हो जाता है इंसान जब इनकी ये हालत देखते हैं। इनका भी बचपन, जो बचपन हम छीन रहे हैं और आज हम आलमी सतह पे बच्चा मजदूरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि ये एक दिन, सिर्फ एक दिन तक महदूद ना रहे। अब हमने अभी तक तो बात की कि क्या क्या अकसाम हो सकते हैं, क्या वजूहात रह सकती हैं, लेकिन अब इस चीज को रोकने के लिए कौन कौन से इदारे हैं, क्या क्या लॉज है, वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे।
1: कबल इसके कि मैं इस बात को रिप्लाई करूं, कहते हैं कि अगर किसी बादशाह से हम उसकी सल्तनत छीने और अगर दूसरे साइड से हम किसी बच्चे की बचपने को छीने, ये एक बराबर सा ट्रॉमा रखता है उस बादशाह के लिए भी और इस बच्चे के लिए भी। कानून तो बहुत सारे हैं, जैसे हम बैन अल-अक़वामी सतह पे बहुत सारी ऐसे एजेंसीज भी हैं, कवानीन हैं, जो पूरे ममालिक को एक आइडिया देती हैं कि आपको कैसे कैसे पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है। उसमें कंपलसरी एजुकेशन भी सबसे बड़ा एक आइडिया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बताया जाता है। अब ये एक जनरल सा एक कानून है, बट अंडर द स्टेट डायरेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि हर किसी गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर किसी बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड प्रोटेक्ट करे। जब अर्ली चाइल्डहुड प्रोटेक्शन में उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स भी हैं, उसके हेल्थ डिमांड्स पे भी हैं, उसके ओवरऑल डिमांड्स में हैं, और आज का जो मौजू ज़ेर बहस है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो अपने जो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिलीज हैं वहाँ पे फोकस करें, सो दैट कि ये बच्चे वहाँ तक ना जाए,
0: ना पहुंचे।
1: अब इसके बाद भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस में ये चीज़ें हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बच्चों के लिए भी बनाई गई हैं। पॉलिसी भी एक प्रॉमिस हो सकता है, इट्स अ सेट ऑफ द प्रॉमिस कि हम क्या चाहते हैं बच्चों के लिए। फिर बहुत सारे कवानीन भी हैं, जैसे हमारे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का है, और उसको हमने ज़ेर बहस अभी लाया, उसके डायमेंशंस को उसको 2016 में तरमीम भी लाई गई। इसके बाद जूनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट हैं, वहाँ पर भी इस बच्चे को ज़ेर बहस लाया गया, और फैक्ट्रीज एक्ट में भी जो ओवरऑल फैक्ट्री मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आप इस फैक्ट्री में बच्चे को एंगेज नहीं कराएंगे। और पॉक्सो एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी है, जब हम अभी बात कर रहे थे कि इन छोटे बच्चों को हमें खदशात हैं कि इन्हें कहीं ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व ना हो, बच्चे ट्रैफिकिंग में नहीं है, बट अगर आपको अप्रिहेंशन भी हो तो उस चीज को भी कानून ने देख लिया है। बट मेरे हिसाब से कानून अपनी जगह, पॉलिसी अपनी जगह, या कुछ ऐसे इदारे जो इन पे काम करते हैं वो अपनी जगह। मैं इस चीज़ को ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों से कोई वादा करता हूँ कि हम 15 अगस्त को किसी सेहत अफजा मकाम पे जाएंगे, ये मैं अपने बच्चों के साथ एक वादा कर रहा हूँ, बट अगर मेरे जेब में पैसे नहीं होंगे, क्या वो वादा फुलफिल हो

0: सकता है।
1: बिल्कुल
0: बात वही है कि अगर गवर्नमेंट इतने वादे करती है इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ एजेंसीज, क्या वाकईतन बच्चों के लिए उतना बजट एलोकेट किया जाता है? ये सबसे बड़ी एक
1: बहुत बड़ा सवाल है। सही,
0: जहाँ पे हम अलग अलग, मैं इस चीज का अलमबरदार भी हूँ कि जब हम यूनियन बजट की बात करते हैं, एक दिन पहले रेलवे बजट पास होता है
1: जी।
0: मैं इस चीज का अलमबरदार हूँ कि आप रेलवे तो ठीक है, बट आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक इंडिपेंडेंट बजट दीजिए, जहाँ पे हर किसी इंडिकेटर को अच्छा अच्छा मुआवजे में आप फाइनेंसेस एलोकेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि स्ट्रीट चाइल्ड पे इतना इन्वेस्टमेंट होने की जरूरत है, हम ये तवक्को नहीं करेंगे कि 2026 में कुछ ऐसे इकदाम हो कि 27 में ये चीजें गायब हो जाए, बट बजट एलोकेशन की जरूरत है, जो हम देखते हैं कि किसी साल बहुत डिक्लाइन हो रहा है। मैं इस चीज को, दो हमारे पास चाइल्ड लेबर का स्पेसिफिक डेटा नहीं है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज देता हूं कि बच्चों को, यही बच्चे और बाकी बच्चे भी, इनके इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। जब पूरे बजट की हम बात करते हैं, दिस ईयर वी हैव अराउंड इट मोर देन 90,000 लाख करोड़ रुपीस फॉर द हेल्थ बजट।
1: ओके,
0: सो आउट ऑफ विच द मेंटल हेल्थ रिसीव्स ओनली 1%।
1: 1% यस।
0: सो यही प्रोपोर्शनेट की बात है। आप बच्चे को प्रायोरिटाइज कीजिए और इसके डोमेन्स को भी आप प्रायोरिटाइज कीजिए। इस बच्चे का एजुकेशन प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, इस बच्चे के माँ बाप के इकोनॉमिक हेल्थ को, स्टेटस को भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। आप स्ट्रीट चाइल्ड प्रोटेक्शन निजाम की बात कीजिए, क्योंकि ये बच्चा खालिस्तन चार दीवारियों को बिलोंग नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल नहीं।
0: आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे अपने घराने में, ठीक है, बट इस बच्चे को स्ट्रीट में भी जाना है। क्या ये बच्चा वहां पे महफूज है? क्या इसको कोई वल्नरेबिलिटी का शिकार तो नहीं बनाएगा? और कुछ ऐसे इदारे जो मैं आवाम तक पहुंचाना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी बच्चा इस किस्म का मिलता है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, दरअसल आपको इस बच्चे की मदद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को बचाने की जरूरत है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप उस उदारे तक, उस इदारे तक जाएं, हमारे पास एक हेल्पलाइन है, दैट यू कॉल इज 1098 1098 10 9 8। तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं कि मैंने अभी हैदरपुरा पीरबाग या एयरपोर्ट के सामने एक ऐसे बच्चे को देखा जो मुझे लगता है कि इस कंडीशन में है, खुदा ना खास्ता इसको ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है या किसी और चीज में। फिर उन एजेंसीज का काम है जो इस एजेंसीज का मैंडेट है कि इन बच्चों को रेस्क्यू करें, उनसे भी मेरी मधुबाना गुजारिश है कि आप इनको टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में ना धकेल दीजिए। जो हम देख रहे हैं कि वो बच्चे जो स्ट्रीट चाइल्ड कल तक थे, हमने उनको रिहेबिलिटेट किया और कुछ टाइम के बाद फिर से वही बच्चे हमारे स्ट्रीट्स पे होते हैं, तो इनको आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, जिन स्टेट से ये आते हैं उनके साथ एक रिहैबिलिटेशन मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है।
1: बहुत खूब, बहुत बजा आपने फरमाया। हम अपना पार्ट करें, फिर आगे क्या होगा वो भी देखने की बहुत जरूरत है। लेकिन शिपन्य जवाब दे, एज उसने पगा ये गिल्ट रोज उनके, मैं मदद कर सकता था, मैंने किया नहीं। अच्छा, आज जुमत मुबारक को खास दो, हमारे बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स जो है वो आज तुम करन खुतब पेश, तो बहुत से ऐसे मौजूद है जिनको वो टच करेंगे, लेकिन ये अख अहम मौजू ती ये कत पे कर अखलाकियात तथ कर सारे जिम्मेदारी हज तथ वन अखलाकियात तुह ब्रोह कु आपका जमीर जो है आपको रोकेगा नहीं, उस वक्त पे कानून आपको रोकता है। अब अगर कोई शख्स ऐसा हो जहां पे उसने रखा हो किसी बच्चे को अपने ढाबे पे, होटल्स में या किसी भी काम में जहां पे हमें पता है कि यहां पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, तेमिस खिलाफ क्या करान कानून, कौन सी सजा होगी उसके खिलाफ?
0: देखिए, अगर आप किसी बच्चे को एंगेज कर रहे हैं, कानून ये भी कहता है कि आपको 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मिनिमम 6 महीने की, और फाइन भी हो सकती है। आपने बात छेड़ दी कानून के अलावा, देर आर 2 थिंग्स टू डील एनी ऑफ द इशू। ये एक पैरामीटर ऐसा है जो आपकी जिंदगी में हर किसी डोमेन में फिट बैठ सकता है। एक लैंडस्केप ऑफ एक्शन, मैं सीट बेल्ट इसलिए पहनता हूँ कि शायद घर से निकल के मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ ना ले, सो दैट इज द लैंडस्केप ऑफ एक्शन। दूसरा है लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं इसलिए सीट बेल्ट पहनता हूँ कि मैं अपने आप को महफूज रखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे लैंडस्केप ऑफ एक्शन के लिए इदारे हैं, बट लैंडस्केप ऑफ कॉन्शियसनेस को उजागर करने की जरूरत है। जो जुमतुल मुबारक के इस ये तो दो चीजें हमारी आ गई, एक तो चाइल्ड लेबर डे भी है और जुमतुल मुबारक भी है। मैं तमाम उलमा इकराम से मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि आज का जो आपका खुतबा होगा वो आप बच्चों के हकूक पे दे। मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा, जब हम हम इस्लामी तवारीख के बारे

0: में बात करते हैं हमसे, जब हम इस्लामी तवारीख पे देखते हैं या उसकी वर्कगर्दानी करते हैं, जहाँ पे हज़रत अबाबकर सिद्दीक की बात आती है कि मर्दों में सबसे पहले इन्होंने ईमान लाया, फिर ख़वातीन, वही उसी सफ़े पे ये भी लिखा है कि ख़वातीन व मज़न आसो उन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा ने
1: जी
0: ईमान लाया, उसी सफ़े पे हज़रत अली करमल्लाहु
1: करम
0: तआला
1: बच्चों
0: वज्हु
1: में
0: की,
1: भी
0: क्योंकि
1: जी
0: उन्होंने बच्चों में से सबसे पहले
1: सबसे
0: उन्होंने
1: पहले
0: ईमान
1: हूँ
0: लाया।
1: बिल्कुल
0: दूसरी एक अकवाल भी हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये भी चाहा है कि आप एक जनरल सी रूलिंग दी है कि आप बड़ों की तज़ीम कीजिए
1: जी
0: और बच्चों को शफ़क़त भी दीजिए।
1: शफ़क़त
0: बच्चे से मुराद वी एज ए उम्मा, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुझे नहीं समझना है कि ये मेरा खुद का बच्चा नहीं है।
1: जी
0: जो उम्मत ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, और
1: बिल्कुल
0: इस बच्चे को एजेंसी देने की ज़रूरत है। एजेंसी आई मीन टू से कि जो आपको एज एन एडल्ट अपने घर में, अपने कम्युनिटी में, अपने वर्क प्लेस पे एक आइडेंटिटी मिलती है, वही आइडेंटिटी इस बच्चे को मिलनी चाहिए।
1: बहुत खूब
0: कहते
1: बहुत
0: हैं
1: खूब
0: कि हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि
1: सल्लल्लाहु अलैहि
0: वसल्लम एक
1: वसल्लम
0: दिन खुतबा फरमा रहे थे, तो इनके राइट साइड से एक छोटा बच्चा बैठा था, तो और इनके लेफ्ट साइड से हज़रत अबाबकर सिद्दीक बैठे थे। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर या तो पानी लाया गया या कोई और चीज़ शरबत पिलाई गई, तो हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं हज़रत अबाबकर सिद्दीक को दूँ, बट वो लेफ्ट साइड से बैठे थे।
1: जी
0: तो यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चे से परमिशन मांगी। ये उम्मत के अलमबरदार बच्चे से परमिशन
1: बच्चे से
0: मांगते हैं कि
1: परमिशन
0: क्या मैं
1: लेते
0: ये गिलास या ये शरबत का प्याला हज़रत अबाबकर सिद्दीक को दे
1: सिद्दीक रज़ी
0: सकता
1: अल्लाह
0: हूँ।
1: ताला अन्हु को
0: ये दरअसल उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं थी, दरअसल ये उम्मत को सिखा रहे हैं कि इस बच्चे की खुद की एक शिनाख्त है
1: बिल्कुल
0: उसको
1: है
0: अंडरस्टैंड करने की, और मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता है कि ये इस जुम्मे पे एक सबसे बड़ा पैगाम यही हो
1: बहुत
0: सकता
1: बहुत
0: है।
1: बेहतरीन। जहाँ पे हम वालिदैन के हकूक की बात करते हैं, बच्चों के हकूक भी उस पे भी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलखसूस आज के दिन इस हवाले से बात ज़रूर कीजिएगा कि आपसे पूछा ज़रूर जाएगा कि आपने बच्चों के साथ क्या रवैया रखा, चाहे वो बच्चा आपका अपना हो या किसी और का हो। हमें तो मज़हब में ये भी सिखाया गया है कि अगर ग्रुप आसे तथ मजा से तुहद बचते गिंदा तथ मजा का यतीम बचते गिंदा पन्नस बच्चस मह करो तीतस कालस आलव, क्या तेज गोस ये महसूस गुन कि अमिश मोल मे मोल मे कंस आलव। ये आपका मजहब आपको सिखाता है और ये हर एक मजहब आपको सिखाता है। फिलहाल आज के मेहमान को हम अलविदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया, बहुत इंफॉर्मेशन आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया
0: बहुत
1: आपका।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया, आप एक घंटा हमारे साथ यहाँ पे रहे। आज का मकसद और आज का मौजू यही था कि बच्चों से उनका बचपन ना छीने, बच्चे हमारे मुस्तकबिल के जो है आलमबरदार है। तो इसी नोट के साथ मुझे इजाजत दें, हमारे पास अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन जाते जाते एक नगमा आपके लिए पेश जरूर करना चाहूंगी। नगमे के उस पर आप जुड़ेंगे फातिमा सोफी के साथ।

भी 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर 11:30 हो रहे हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम जहत 68.8 मीटर तो FM 71.5 MHz पेट समीन वंश पे छक्र तो फनकार फारूक अहमद गनाई तहम नवाई मनीष बूझ तो कलामे लाल आर गई।

0: रेडियो, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने वाले है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक MOU से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की PV सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक

0: India's PV Sindhu stormed into the women's single semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney today. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 12:10 हुए हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। ये है आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम 268.1 मीटर तो FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन आज जुमत मुबारक, पेश नाज़ शरीफ دستلو حسرت حمید صبنی کلام ست پیش کرن اسد انجم تو ستھی

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि माली शमूलियत से लेकर कारखानादारी, तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, मकानात, खेलकूद, साइंस, इंतजामिया और दीगर मुतअद्दिद शोबों में खवातीन एक नुमाया रोल अदा कर रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते शोबों में खवातीन की

0: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

0: जाएं सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है
3: जी।
4: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
3: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
4: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
4: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
3: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
4: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
3: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
4: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की
3: जी।
4: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है
3: जी।
4: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
3: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
4: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है
3: जी।
4: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया
3: जी।
4: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
3: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
4: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है
3: जी।
4: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
3: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
4: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
3: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
4: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
3: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
4: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
4: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है,

0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं?

एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: जी सभी, आप समझ कर रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम NCERT उमंग।
5: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 1:40 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नातिया कवाली, पेश कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और साथी कलाम है सतार नियाजी का।

जी समीन, आप सुन रहे थे नातिया कवाली, पेश कर रहे थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, और साथ ही कलाम था सतार नियाज़ी का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन आपसे थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को

0: 1650 फी क्विंटल कर दिया गया है, जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तिलात और नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसव्वदा अवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजा किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज करना है। उसूलों का ये मुसव्वदा इत्तिलात और नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नजरसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीक़ेकार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेनी दुजैरिक ने कहा कि जनाब गुतेरस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आजादी के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2026 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के 2 तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको के जेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मैक्सिको से जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में खवातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building.

आप सुनते हैं आखिर में फिल्म गुनाह से गीत रूप कुमार राठौड़ साबरी ब्रदर्स और साथियों की आवाजों में, आनंद राज आनंद के गीत संगीत में।

जी समीन, आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे। दिन के अढ़ाई बज चुके हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया वेव जहत अरहट अशार्य अठक मीटर तो एफ एम अखत अशार्य पांच मेगा हर्सन पे समीन वन पेश छकर तो रो फनकार फारूक अहमद गनई तो हम नवाई मनीष बुझो तो कल दाम अफजल वाली।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों फिल्म सखी का प्रोग्राम लेके मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म टैक्सी चोर से। ये खूबसूरत गीत किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, अनजान के बोल बप्पी लहरी का संगीत।

जी दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं लोहो के दो रंग से। ये गीत फुरुका इस्तर के बोल सुनते हैं, बप्पी लहरी के संगीत में एक बार फिर किशोर दा की आवाज।

जी दोस्तों, अगला गीत हमने चुना है फिल्म दो रास्ते से दिल को छू लेने वाला ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में आपके नजर, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

खुशियाँ एक ये दिन है तू जाके सारी सारी रतियाँ।

जी दोस्तों, आपने सही पहचाना। आप समाप्त कर रहे हैं फिल्म दिल से मिले दिल से। ये टाइटल गीत किशोर दा और साथियों की आवाजों में अमित खन्ना के बोल बपी लहरी का संगीत।

समझ कीजिए फिल्म पूरब पश्चिम से ये खूबसूरत गीत संतोष आनंद के बोल, कल्याण जी आनंद जी के संगीत में, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

0: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में घर घर की आवाज, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज। मीडियम में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म देश प्रेमी से, ये गीत आपके नजर आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: दशमलव एक मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म देश प्रेमी से, ये गीत आपके नजर आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

जी दोस्तों, आपने फिल्म धर्मात्मा से गीत सुना। किशोरदा की आवाज में नगमा निगार थे जी। वर्मोस की तरतीब दी थी कल्याण जी आनंद जी ने। ऐसी फिल्म से और एक गीत आपकी नजर महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म परवरिश से। ये गीत मोहम्मद रफी और किशोरदा की आवाजों में, नजरू के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें नशर होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क की तरक्की में खवातीन का रोल अहमियत का हामिल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर दाखिला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों का लिया जायजा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह और किंजा रूपू राम मोहन नायडू के साथ मुलाकात। श्रीनगर हवाई अड्डे से मुतालिक मामलात पर किया तबादला ख्याल। और सरकार सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाने की वादा बंद, वजीर सेहत सकीना हेतू। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के तरक्की के सफर को आगे ले जाने में खवातीन अहम रोल अदा कर रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा है कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान एनडीए सरकार ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके कायदाना रोल का एतराफ करने की समत में ठोस इकदाम किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल साहिबान भी मौजूद थे। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्ताम को पहुंचेगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी हवाबाजी के वजीर किंजा रूपू राम मोहन नायडू के साथ अलग अलग मुलाकात करके श्रीनगर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे को योकुम से 16 अक्टूबर तक मुजवजा तौर बंद करने पर अपनी तश्वीश का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा कि इस मौसम के दौरान मुल्क की सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद कश्मीर की सैर पर आती है, जिसके मद्देनजर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का जम्मू कश्मीर के

0: साथ हवाई राबता बहाल रखना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले पर मुतबातिल इंतजाम करने पर गौर कर रही है। ये बात काबिले जिक्र है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे की अजसर नौ मरम्मत और रिसर्फेसिंग के लिए रनवे को 16 दिन के लिए बंद करने की तजवीज रखी गई है। इससे कबल वजीर आला ने कौमी राजधानी में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में भी शिरकत की, जहां उन्होंने रोजगार, सियाहत, बुनियादी ढांचे और तरक्याती तरजीहात को उजागर किया। वजीर सेहत सकीना इतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तकम बनाने और तिबी खदमात की फराहमी में बेहतरी लाने की वादाबंद है। वजीर मौसुफा ने श्रीनगर जिले में खानियार और हजरतबल इंतखाबी हलकों का दौरा करने के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने आम लोगों से ताकीद की कि वो तिबी इदारों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने पर अपना किरदार अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर और एमएलए हजरतबल सलमान अली सागर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसर भी उनके हमराह थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने सस्ती, काबिल एतमाद और मौसर ट्रांसपोर्ट खदमात की फराहमी में JKRTC के अहम किरदार को उजागर किया है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 88वीं मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कारपोरेशन को जदीद मौली तौर पर पायदार और मुसाफिर मवाफिक इदारे में तब्दील करने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान JKRTC मुलाजमीन के लिए 7वें पे कमीशन के स्केलों के नफाज की मंजूरी और कई दीगर खदशात और मसाइल पर भी गौरखोज किया गया। जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत मुआशरे के हर तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। वो उनसे मिलने आए जो मुखते के कई वफूद से बात कर रहे थे। वजीर मौसूब ने महकमा जल शक्ति के अफसरों को जमीनी सतह पर जायजा लेकर आवाम के लिए पीने के साफ पानी की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंतजामिया के फरोग और सार्फिन को बेहतर खदमात फराहम करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए महकमे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट शूटर जसपाल राणा के फौत होने पर सदमे का इजहार किया है। एक ताजेती पैगाम में LG ने कहा है कि अनजहानी बेशुमार एथलीट्स के रोल मॉडल थे और उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया। LG ने जसपाल राणा के सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवान JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर के इंतकाल पर सख्त रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताजियत जाहिर करते हुए मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। वाजह रहे कि 2019 बैच के JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर इस वक्त हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के अहदे पर तैनात थे। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मनुष्यात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक समाजी कारकुन सरवत हिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हमारे कश्मीर में हमारे नौजवान हैं, टीन एजर्स हैं, ये गलत कामों में मुलवस हो रहे हैं, खासकर जो ये ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलवस हो रहे हैं। लेकिन इससे ओवरकम होने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बच्चे हैं इनको हमें वापस लाना पड़ेगा, इनको हमें रिहैब करना पड़ेगा, इनको हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम, और वो एग्रेसिवली और ज्यादा इसमें कार्रवाई करें ताकि ड्रग्स जो ये गंदगी यहाँ पे پھیلے، اس کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں

0: खासकर जो हमारे माँ बाप है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं आजकल।
1: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला बड़गाम में मनुष्यात के खिलाफ बेदारी, रसाई और नफाज की सरगर्मियां जारी रखते हुए कई प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इन प्रोग्रामों का मकसद मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ कोशिशों को तकवीत देना और एक सेहतमंद मनुष्यात से पाक मुआशरे को फरोग देना है। पुलवामा के एमएलए वहीदुर्रहमान परा ने पुलवामा काकापोरा पापोर सड़क की खस्ता हालत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि खत्ते के सबसे बड़े सनती मराकज को जोड़ने वाली ये सड़क फौरी तजदीद मरम्मत का तकाजा करती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अहम सड़क इलाके के आम लोगों के साथ साथ तिजारत और इक्तसादी तरक्की की राहदारी भी है। जम्मू में शुमाली जोन के लेजन अफसरों की 2026 की कॉन्फ्रेंस जारी है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल से हो गया, जिसमें शुमाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले टेक्सटाइल सेक्टर के लेजन ऑफिसर और दीगर नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कपड़ों की वजारत के तहत काम करने वाली टेक्सटाइल्स कमेटी ने किया है, जिसने सनत से जुड़े मामलात, पॉलिसी, दरामद, मियारात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एहतमाम से मुनाकिदा सनतकारी का तरबती प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर हो गया। विमेन्स आईटीआई जम्मू के इश्तराक से मुनाकिद किए गए इस प्रोग्राम में 32 खवातीन ने शिरकत करके कारखानादारी की तरबियत हासिल की। इख्तामी तकरीब पर मुकर्रीन ने तरबियत हासिल करने वाली खवातीन से ताकीद की कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। हुकूमत ने इदारा जाती सनती और तजारती सार्फिन पर रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल खरीदने पर पाबंदी आयद की है। उन्हें अपनी जरूरियात मखसूस कंज्यूमर पंपों से पूरा करने की हिदायत दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह फैसला मगरब एशिया में जारी कशीदगी के नतीजे में सप्लाई चेन में पैदा होने वाली रुकावटों को नजर में रखते हुए लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून को मुनाकिद होने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तहान के दौरानिया में 15 मिनट का इजाफा किया है। इस तरह इम्तहान बवक्त 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि वो दाखिला इम्तहान को शफाफ तरीके पर मुनाकिद कराने के लिए पुरअज़्म है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सफर के 4 बजने वाली है। अब नशर होता है पहाड़ी प्रोग्राम का। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम केन कह मैं तुसदा मेजबान जहांगीर अहमद खान अपने तमाम सुनने वाले को प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम अर्ज करदा ते अज दी इस महफिल विच तुसां सारयां दा खैर मकदम करदा। सामीन बच्चे कसबी कौम दा कीमती सरमाया होंदे न और रोशन मुस्तकबल होंदे न। ओ मुआशरे दी तरक्की और खुशहाली दे जामिन न। अज दे बच्चे ही कल दे डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, साइंसदान, फौजी और रहनुमा बनते हैं। इस वास्ते इनकी सही तालीम व तरबियत तय खसूसी तवज्जा देना जरूरी है। सामीन बच्चे कुदरती तौर तय मासूम पाक दिल और सीखने के शौकीन होते हैं। अगर उन्होंने असल माहौल म्यारी तालीम और बेहतरीन तरबियत

जी सामीन, आरफ नाज दे गाए दे इस लोक गीत दे नाल ही अस्ते आए दे पहाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुक्या। दो अगली मुलाकात तोनी अपने मेजबान जहांगीर अहमद खान ता पहाड़ी प्रोग्राम दी प्रोड्यूसर मारूफ उन निसा को इजाजत। अच्छा जी, अल्लाह।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। 4:20 हो रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे यहाँ से पहाड़ी खबरों का बुलेटिन ब्रॉडकास्ट होगा।

0: आप समाप्त कर रहे थे आज का पंजाबी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 5 बजे नश होगा आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आज जुमातुल मुबारक है, तो इस मुबारक दिन पर गलबात करेंगे। चूंकि मुफ्ती फैजुल वहीद दोरों को इतफाकन गल है कि बी ए पैदाइश और वफात उनकी जून ही का महीना में हुई है। मौलाना फैजुल वहीद की पैदाइश जून 1965 में डोडसन बाला थाना मंडी राजौरी में हुई। बचपन में ही इस्लामी तालीम को शौक पियो, तो दारुल उलूम देवबंद में दाखिलो लियो। वे पहला था जिन्हें हिफ्ज कुरान पाक को शरफ हासिल कियो। फिर दारुल उलूम तो फाजिल की सनद ली, ते मुड़ मुफ्ती को कोर्स भी मुकम्मल कियो। इस तरह वे हाफिज फाजिल ते मुफ्ती की त्रै सनद लेन आला कुछ एक खुशकिस्मत लोगों विच हुए। दारुल उलूम तो वापसी पर उन्होंने साल 1990 ईस्वी के करीब जम्मू शहर का इलाका बठंडी में इस्लामी दुरुस को सिलसिलो शुरू कियो, जो इस वेले तरक्की करके एक जामे की सूरत में दुनिया के सामने आ गयो है। ते इस अरसा में उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा ते तफसीर को कम संभालियो, और जो कम लगभग 7 साल में मुकम्मल हुआ। और इस कम की वजह से उन्होंने कौम ते जबान की जड़ी बड़ी खिदमत की। हाफिज मुफ्ती फाजिल मौलाना फैजुल वहीद साहब और उनको मुबारक का मोहन शाया होकर पढ़ नाला के तक पहुंच गए हैं। अगर हम गल करें एक फैजुल वहीद साहब और जिसने हमने गल की कि पहला गोजरी का जिन्होंने कुरान पाक ना गोजरी में जो उसको मुकम्मल तर्जुमो कियो। इस तो अलावा जो उनका बकिया काम है उसमा सिराजुन मनीरा नूरालो दियो एक बायोग्राफी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बारे है। इस तो अलावा बाकी के मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मरीज व मैयत और विरासत के अहकाम कुरान और हदीस की रोशनी में ये वे किताब है जिनते आज जुड़ी पूरी दुनिया फैजयाब हो रही है। गोजरी तो टाइटल इन किताबों को दस है कि ये उर्दू में लिखी गई है, तो शायद इनको आने वाला दौर में गोजरी तर्जुमो भी हो जाएगा। तो तमाम तर खिदमात के बाद लोग की उम्र में 56 साल की उम्र में वह एस कॉम्स आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जम्मू में 1 जून 2021 में उनकी फात होगी। तो मारी दुआ है कि उनने जड़ी जबान और इस कौम की जड़ी खिदमत की है बहसियत रिलीजियस स्कॉलर के उनकी इस खिदमत न लेके और कुरान शरीफ को गोजरी में जो तर्जुमो कियो उसने लेके हम दुआ गोवा अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत को जो आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में उन्होंने जो मुकाम अता करे। आमीन। प्रोग्राम आगे हम दे और सुन ले।

0: अल्लाह।
1: नात्य मुशायरा के सिलसिला के तहत 19 जुलाई 2013 रिकॉर्ड किया गया आर्काइव दिल्ली एक मारे खुल मुशायरा जिसकी मेजबानी मरहूम नसीम पुंशी ने की है, वाजिद कैफ साहब, गुलाब दीन जजा साहब और मोहम्मद इदरीस चाद साहब और जो अपना वो नात्य कलाम पेश करेंगे, तो आओ यू नात्य मुशायरा सुन लिया।
2: आज का नातिया मुशायरा में जेड़ा शायर हिस्सों ले रहे हैं उनका इसमें ग्रामी है वाजिद कैफ साहब, गुलाब दीन जजा साहब, मोहम्मद अदरीस शाद साहब ते बंदो नाचीज नसीम पुंछी। इस मुशायरा का पहला शायर नाम दब देवा के वे अपनो कलाम सुनावे वाजिद कैफ साहब।
3: नातमा को शेर
4: इरशाद शाद
3: मदीनो अमेदा ते आसां गी जाए वरीबां असर पर दलासां गी जाए।
2: वाह वाह फिर शेर यू पढ़।
3: मदीनो अमेदा ते आसां गी जाए वरीबां असर पर दलासां गी जाए।
4: वाह वाह
3: उस दर दे सखना सवाली नहीं मुड़ता जेड़ा भी जाए वे खाली नहीं
4: मुड़ता। वाह
2: वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
3: दुखिया दिलांगा एहसासां गी जाए मदीनो अमेदा ते
4: आसां गी जाए।
1: वाह सुभान अल्लाह।
3: ए दुआ पे हो जाए आखिर सीधी फिर हो जाए बिगड़ी भी तकदीर सीधी। ए दुआ पे हो जाए आखिर सीधी फिर बिगड़ी भी हो जाए तकदीर सीधी। व रोता मुकदरा का आसां गी जाए मदीनो मैदान दे
4: सुभान अल्लाह।
2: फिर यू बंद पड़ी।
3: ए दुआ पे हो जाए आखिर सीधी फिर हो जाए बिगड़ी भी तकदीर सीधी। पर होता मुकदरा का आसां गी जाए मदीनो उम्मीदा ते आसां गी जाए। शेर दरूदा गी जाए सलामा की धरती मदीनो नबी का गुलामा की धरती। व रहमत की बारिश अनासां गी जाए मदीनो उम्मीदा ते आसां गी जाए। जे डूबी भी बेड़ी न थाए कनारा उते को नजर है बराबर है सारा।
4: सुभान अल्लाह।
3: जे डूबी भी बेड़ी न थाए कनारा उते को नजर है बराबर है सारा। नी एकण किसे गी या खासा गी जाए मदीनो मैदान ते आसा गी जाए।
1: फिर पढ़िए जी।
3: जे डूबी भी बेड़ी न थाए कनारा उते क नजर है बराबर है सारा। नी एकण किसे गी या खासा गी जाए मदीनो उम्मीदा ते आसा गी जाए। गरीबां का सिर पर दलासा गी जाए मदीनो उम्मीदा ते आसा गी जाए।
4: सुभान
2: वाह वाह वाह। ये था वाजिद कैफ साहब। ते वाजिद कैफ ते बाद हूं गुलाब दीन जजा साहब ना गुजारिश करवा के वे अपनो नातिया कलाम सुनावे।
4: नात शरीफ का कुछ शेर
2: इरशाद।
4: खुदा खुद सना खान नबी मोहतरम है। खुदा खुद सना खान नबी मोहतरम है। कमली का साया म अरबो अजम है। अगलो शेर। थारो कम है मुश्किल न आसान करनो। थारो कम है मुश्किल न आसान करनो। सवालू न लहजा म सुल्तान करनो। यह है शान थारी यु थारो करम है। खुदा खुद सना खान नबी मोहतरम है। अगलो बंद। यतीमा का सिर पर रेओ ताज रखतो। यतीमा का सिर पर रेओ ताज रखतो। खुदा जिसकी हर दम रेओ लाज रखतो। वो शाफाए महशर वो खैरुल अमम है। खुदा खुद सना खान।

0: मौत न मैं।
1: यो शेर शेर सुनाइए।
0: यतीमा का सिर पर रेओ ताज रख तो, खुदा जिसकी हरदम रेओ लाज रख तो,
1: वाह
0: वो शाफाए महशर वो खैरुल उमम
1: उमम है।
0: है, खुदा खुद सना खान नबी मोहतरम है।
1: हाँ
0: जिसने कुफर को अंधेरों मिटायो, जिसने कुफर को अंधेरों
1: अंधेरों मिटायो।
0: मिटायो, इंसानियत ना सलीको सिखायो,
1: वाह
0: वो हर हाल मा जेड़ो साबित कदम है,
1: वाह
0: खुदा खुद सना खान नबी मोहतरम
1: वाह वाह
0: है।
1: वाह वाह क्या बात।
0: अर्शे बरी पर बुलाया गया तम, अर्शे
1: अर्शे
0: बरी
1: बरी
0: पर
1: पर
0: बुलाया
1: बुलाया
0: गया
1: गया तुम
0: तम,
1: जी।
0: सरदार सबका बनाया गया
1: वाह
0: तम,
1: वाह
0: पैदा
1: वाह वाह
0: जिसकी खातिर कियो लोहो कलम है, पैदा जिसकी खातिर कियो लोहो कलम है यासीन जिसकी व शाने करीमी, है
1: वाह
0: यासीन
1: सीन
0: जिसकी
1: जिसकी
0: व
1: वशाने
0: शाने करीमी,
1: करीमी।
0: पसंद जिसकी आई खुदा ना
1: वाह
0: हलीमी,
1: वाह वाह वाह सुबह
0: है
1: क्या बात
0: यासीन जिसकी व शाने
1: करीमी।
0: करीमी, पसंद जिसकी आई खुदा ना हलीमी, जजा खुश नसीबा न फिर कैसो गम है,
1: वाह
0: खुदा खुद सना खान नबी
1: नबी
0: मोहतरम
1: मोहतरम है।
0: है, कमली
1: सुनो
0: का साया अरबो अजम है।
1: वाह
0: दूजी नात शरीफ का
1: इरशाद
0: कुछ,
1: इरशाद
0: तखलीक आदम की वो इब्तिदा है,
1: जी।
0: तखलीक आदम
1: आदम
0: की
1: की
0: वो
1: वो
0: इब्तिदा
1: इब्तिदा है।
0: है, मोहम्मद मोहम्मद रसूले खुदा है,
1: वाह
0: वो
1: वाह
0: शम्सो जुहा है वो बद्रो दुजा है, वो शम्सो जुहा है वो बद्रो दुजा है, वो राता न काली चानन बनाए,
1: वाह वाह
0: मोहम्मद मोहम्मद रसूले खुदा
1: क्या
0: है।
1: है।
0: ताते सराते अरशे बरी तक, ताते
1: ताते
0: सराते
1: सराते
0: अरशे
1: अरशे
0: बरी
1: बरी
0: तक,
1: तक।
0: रहमत फलक ते जिसकी जमी तक,
1: वाह
0: रहमत फलक ते जिसकी
1: इसकी
0: जमी
1: जमीन
0: तक,
1: तक।
0: जिसना खुदा खुद कोले बुलाए,
1: वाह
0: मोहम्मद
1: वाह
0: मोहम्मद
1: वाह
0: रसूले खुदा है।
1: वाह
0: अगलो बन,
1: इरशाद।
0: अजलते अबद तक इमामत है जिसकी,
1: वाह वाह
0: अजलते अबद
1: अजल
0: तक
1: तक
0: इमामत
1: इमामत
0: है
1: है
0: जिसकी,
1: जिसकी।
0: हलीमी अदाते नदामत है जिसकी,
1: वाह वाह
0: शाहे
1: वाह
0: वलायत को रुतबो अता है, मोहम्मद मोहम्मद
1: मोहम्मद
0: रसूले खुदा है।
1: वाह
0: हुवे अकमल मुकम्मल ईमान जिस पर,
1: वाह
0: हुवे अकमल मुकम्मल
1: मुकम्मल
0: ईमान
1: ईमान
0: जिस
1: जिस पर।
0: पर, नाजल कियो रब ने है कुरान जिस पर, बेशक वो बेशक रसूले खुदा है,
1: खुदा
0: मोहम्मद मोहम्मद रसूले खुदा है।
1: वाह वाह
0: जहाना को सरताज जहाना को सरताज मेरो नबी है, जहाना को सरताज
1: सरताज
0: मेरो
1: मेरो
0: नबी
1: नबी है।
0: है, ऊंची शान जिसकी उचेरो नबी है,
1: वाह
0: ऊंची शान जिसकी उचेरो
1: चेरो
0: नबी
1: नबी
0: है,
1: है।
0: बिन देखे हर एक फिदा है, मोहम्मद मोहम्मद
1: मोहम्मद
0: रसूले
1: रसूले
0: खुदा
1: खुदा
0: है,
1: है। वाह
0: तखलीक आदम की वो इब्तदा है,
1: वाह
0: बुराता न काली चानन बनाए।
1: वाह वाह ये गुलाब दीन जजा साहब ताते हूँ शेर पढ़ने की दावत दियो मोहम्मद अदरीस शाह वे अपनो कलाम पेश करें।
0: नातिया का तो अर्ज़ है जी,
1: इरशाद।
0: इस्लाम को ना मशहूर होयो सरकार मदीना कह सदके,
1: वाह
0: इस्लाम को ना मशहूर होयो सरकार मदीना कह सदके, वो जुल्म से तुम कुल दूर होयो सरकार मदीना कह
1: वाह वाह
0: सदके,
1: वाह वाह बहुत अच्छा बहुत
0: वे
1: अच्छा।
0: जाबर हाकम अरब का था जिड़ा जिंदा कोई था बचिया ना,
1: वाह हाय हाय
0: खत्म जग दे वो दस्तूर होयो सरकार मदीना कह सदके।
1: वाह
0: नात शरीफ का शेर है कि
1: इरशाद।
0: वह धरती पाक मदीना की, वह धरती पाक
1: पाक
0: मदीना
1: मदीना
0: की,
1: की।
0: जड़ी धड़कन मेरा सीना की,
1: वाह वाह
0: वे
1: वाह
0: अर्ज सुने मस्कीना की,
1: वाह
0: हैं उम्मत का गमख्वार नबी, कुल नबियां का सरदार
1: सरदार
0: नबी।
1: वाह
0: वह
1: इरशाद।
0: धरती देख प्यारा की, बल होए जान बीमारा की, उत बख्शिश ओ गुनहारा की,
1: वाह
0: गया अर्शां ते लंग पार नबी, कुल नबियां का सरदार
1: वाह
0: नबी।
1: फिर
0: वाह
1: ये शेर फिर सुनाइए।
0: वह धरती देख प्यारा की, बल होए जान बीमारा
1: बीमारों की
0: की,
1: वाह
0: उत बख्शिश ओ गुनाहारा की,
1: की।
0: गया अर्शां ते लंग पार
1: नबी
0: नबी, कुल नबियां का सरदार नबी।
1: वाह सलाम
0: रबा दस ये उन बहारा ना, रबा दस ये उन
1: उन
0: बहारा ना,
1: बहारों
0: उन रहमत का चमकारा ना,
1: ना
0: उन सोना
1: इशारा
0: दीद निजारा ना,
1: सुहाना।
0: मेरी मुक्के इंतजार नबी, कुल नबियां का सरदार
1: वाह वाह
0: नबी।
1: वाह बहुत अच्छा।
0: रबा सदको करबला शहीदां को, रबा
1: सदको
0: सदके करबला
1: करबला
0: शहीदां
1: शहीदों
0: को,
1: को।

0: चन मदीने देखूं ईदां को,
1: हाँ
0: देखूं
1: हाँ
0: जाके मेलो दीदां को,
1: हाँ
0: मेरी सुन ले जार पुकार नबी, कुल नबियां का सरदार
1: वाह
0: नबी।
1: वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
0: वो तो है गम ख्वार गरीबां का, वो तो है गम ख्वार
1: खार
0: गरीबां
1: गरीबा
0: का,
1: को
0: है आकम आप तबीबां का,
1: सुभान
0: उत मेला शाद नसीबां का,
1: अल्लाह
0: मिन सदले उस दरबार नबी, कुल नबियां का
1: वाह
0: सरदार
1: वाह
0: नबी।
1: वाह
0: एक नाथ शरीफ का चंद शेर और हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा

0: ये था मोहम्मद अदरीस शाह साहब, जिनते तम उनकी नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहा था कि बंदो ना चीज नसीम पुंछी, एक छोटी जैसी नात अर्ज करे, बड़ी बोधी ते बोधी मेरी टारी या रसूल अल्लाह, बड़ी बोधी ते बोधी मेरी टारी या रसूल अल्लाह, खड़ी गोली अडीके आज भी थारी या रसूल
1: अल्लाह,
0: खड़ी गोली अडीके आज भी थारी या रसूल अल्लाह, या धरती नूर को टोटो बनी थी अरब के नूरों, या धरती नूर को टोटो बनी थी अरब के नूरों, सख्त दिलगीर है आज उम्मत थारी या

0: लाख
1: सुभान
0: या धरती नूर गोटो टो
1: अल्लाह।
0: बनी थी अरब गै नूरू सख्त दिलगीर है अज उम्मत थारी या
1: या रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह
0: अल्लाह।
1: सल्लल्लाहु
0: अगे
1: अलैहि
0: जुदाई मां करे यो दिल मेरो तड़फाट सीना मां,
2: वसल्लम।
0: जुदाई मां करे यो दिल मेरो
1: तड़फाट
0: तड़फाट
1: सीना
0: सीना
1: मां,
0: मां, मेरा सा की है डोरी डाडी पारी या
1: रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह
0: अल्लाह।
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह
0: जुदाई मां करे यो दिल मेरो तड़फाट सीना
1: सीना
0: मां,
1: मां
0: मेरा सा की है डोरी डाडी पारी या
1: या
0: रसूल
1: रसूल
0: अल्लाह।
1: सुभान अल्लाह
0: बड़ी बोदी ते बोदी मेरी टारी
1: या
0: या
1: रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह
0: अल्लाह।
1: सुभान अल्लाह।
0: थारा नावा मुबारक नाल एक ठंडियार पै जाए, थारा नावा
1: मुबारक
0: मुबारक
1: नाल
0: नाल
1: एक
0: एक
1: ठंडियार
0: ठंडियार
1: पै
0: पै
1: जाए,
0: जाए, आएगी दीदगी कद मेरी बारी या
1: या
0: रसूल
1: रसूल
0: अल्लाह।
1: सुभान अल्लाह इरशाद
0: आएगी दीद की कद मेरी
1: मेरी बारी
0: बारी
1: या
0: या
1: या
0: रसूल
1: रसूल
0: अल्लाह।
1: अल्लाह।
0: बड़ी बोदी ते बोदी मेरी टारी
1: अरे
0: या
1: या
0: रसूल
1: रसूल
0: अल्लाह।
1: अल्लाह।
0: मदीना माँ कदे बचकार मस्कीना के पैसे था,
1: वैसे था
0: मदीना
1: माँ
0: माँ कदे
1: कदे
0: बचकार
1: बचकार मस्कीना
0: मस्कीना
1: के
0: के
1: पैसे
0: पैसे
1: था,
0: था, उना को फैज अज तोड़ी है जारी
1: या
0: या
1: रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह।
0: अल्लाह।
1: सुभान अल्लाह सुभान
0: उना
1: अल्लाह
0: को फैज अज
1: अज तोड़ी
0: तोड़ी
1: है
0: है
1: जारी
0: जारी
1: या
0: या
1: रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह।
0: अल्लाह। हूं पक्को हो जाऊं जेकर कदे थारी गलामी मां,
2: सुभान अल्लाह सुभान
0: हूं
1: अल्लाह।
0: पक्को
1: पक्को
0: हो
1: हो
0: जाऊं
1: जाऊं
0: जेकर
1: जेकर
0: कदे
1: थारी
0: थारी
1: गुलामी
0: गुलामी
1: मां,
0: मां, पई छुटे मेरा ते दुनिया सारी
1: या
0: या
1: रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह।
0: अल्लाह।
1: सुभान
0: हूं
1: अल्लाह। फिर पढ़िए जी चैन।
0: पक्को हो जाऊं जेकर कदे थारी गुलामी
1: गुलामी मां
0: मां, पई छुटे मेरा ते दुनिया सारी
1: सारी या
0: या
1: रसूल
0: रसूल
1: अल्लाह।
0: अल्लाह।
1: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
0: बड़ी बोदी ते बोदी मेरी टारी या
1: या
0: रसूल
1: रसूल अल्लाह।
0: अल्लाह।
2: वाह
0: अगर इजाजत है ते कुछ एक शेर एक और
1: जी
0: गजल
1: जी
0: का
1: जी
0: सुना छोड़ू,
1: इरशाद
0: एक
1: इरशाद
0: किस्म की या नात ही है।
1: जी इरशाद।
0: लथो चन असमानू चोली आण पियो,
1: लथो चंद
0: लथो चन
1: चंद
0: असमानू
1: असमानू चोली
0: चोली
1: आन
0: आण
1: पियो,
0: पियो, सारी दुनिया गो अंधियारो दूर गयो।
1: या सुभान अल्लाह।
0: सारी दुनिया गो
1: को
0: अंधियारो
1: अंधियारो
0: दूर
1: दूर गयो,
0: गयो, हर इंसानो शिंगर पत्थर ऊंचा था, हर इंसानो शिंगर
1: शिंगर
0: पत्थर
1: पत्थर
0: ऊंचा
1: ऊंचा
0: था,
1: था,
0: चन चढ़ियो हर जर्रो सजदे ठह गयो।
1: सुभान
2: वाह क्या बात।
0: हर
1: इंसान
0: इंसानो शिंगर पत्थर
1: ऊंचा
0: ऊंचा था,
1: ऊंचा था,
0: चन चढ़ियो हर जर्रो सजदे ठह
1: ठहर गयो।
0: गयो,
1: सुभान
0: जेड़े पासू लंघिया खुशबू फैल गई,
1: जेड़े
0: जेड़े
1: पासू
0: पासू
1: पासू
0: लंघिया
1: लंघिया
0: खुशबू
1: खुशबू
0: फैल
1: फैल गई,
0: गई, नी आयो नी आसे कोई आप जियो।
2: वाह
0: जेड़े पासू लंघिया खुशबू फैल गई, नी आयो नी आसे कोई आप जियो,
1: सुभान
0: केड़े पास तपोशु मुच अनेरो है,
1: केड़े पास
0: केड़े पास तपोशु मुच
1: अंधेरो
0: अनेरो
1: है,
0: है, सल्लू अले का नूर ना मेरे हाथ दियो, सल्लू अलै का नूर न मेरे हाथ दियो, सारी दुनिया मीमू नूरो नूर हुई, सारी दुनिया मीमू नूरो नूर हुई, चलो मके मदीने हिस्सो दौड़ लियो, चलो मदीने चलो मके मदीने हिस्सो दौड़ लियो, लथो चन आसमानो चोरी आन पियो, सारी दुनिया को अंधियारो दूर गयो। ते इसके नाली आज का इस मुशायरा नाम खत्म करा, इसके बिच जो जिन्होंने अपना कलाम सुनाए शायरा ने वे है वाजिद कैफ, गुलाब दिन जजा, मोहम्मद अदरीस शाद, ते बंदो ना चीज नसीम फुंशी।
3: अगर हमारा कुल बैत है महमूद शफीक खान और की आवाज़ में और सुन लें।

पूरो क्यों जाएगो तो उसमें बॉन्डेड चाइल्ड लेबर भी क्यों जाए माँ या प्रोडक्शन हाउसेस माँ फैक्ट्रियों में बच्चा भी वाला किए जाए ये उन थारो हाथ बटावेगा। हालांकि हिंदुस्तान का आइन के बीच भी जो है चाइल्ड लेबर जो है वो रोक टोक लाएगी आर्टिकल 24 के तहत। और इसके अलावा तुम देखो कि गुर्बत जुड़ी है वह क्यों जाके बच्चा मजदूरी की वजह जी गुर्बत है लेकिन इस वक्त हुकूमत एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने बाजाफ्ता तौर पर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जी वह तालीम दी जाए किताब मुफ्त में दी जाए मिड डे मील प्रोग्राम के तहत गुजा जी मुफ्त में दी जाए यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाए तो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपना बच्चा ना तवज्जो ना दें तो हमारी अपनी गलती है।

गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है कि ड्रॉप आउट कट की जाए, एनरोलमेंट ज़्यादा की जाए, उस प्रोग्राम के तहत स्कूलों में दर्ज की जाए। आज तक हर चीज़ मुफ्त है, गजा भी हुकूमत मुफ्त में दिया है, तालीम भी मुफ्त में दिया है, हायर एजुकेशन भी मुफ्त में दिया है, स्टे करने वास्ते खासकर जो ट्राइबल बस्तियों के जो लोग हैं बढ़ाया गया है। आज पीजी डिग्री जो बच्चा कर रहे हैं उन्होंने भी हॉस्टल जो एस्टैब्लिश किया गया। जरूरत है कि हम गवर्नमेंट की स्कीम उनसे फायदा चाहवा और आने वाली नस्ल जी दलदल से आजाद कराई जाए और इनकी नशोनुमा हो सके, इनकी सेहत वारा ख्याल रखी जाए, तो इन्होंने जो हॉस्टल में और स्कूलों में दर्ज की जाए, ना कि फैक्ट्री में उन्होंने जो है वो दर्ज की जाए। इसके नाल ही हमारा प्रोग्राम को विलम्ब के प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक पानी, तो अपना मेजबान जाकिर हुसैन दे इजाजत। अच्छा जी, रब राखो।

आप आज का गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 2 पर। 5:50 होने वाले हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें नशर होंगी। गोजरी खबरों के फौरन बाद यानी ठीक 6 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। पहले आइए गोजरी में खबरें समाप्त करते हैं।

0: किरदार ने उजागर कियो है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 28वीं मीटिंग की सदारत करता हुआ उन्होंने कारपोरेशन ना जदीद माली तौर पर पायदार ते मुसाफिर मुआफिक अदारा में तब्दील करने पर जोर दितो। जल शक्ति जंगलात और माहौलियात ते कबायली अमूर का वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है जे उमर अब्दुल्ला की क्यादत वाली हुकूमत माशरा का हर तबका की जरूरियात ना पूरा करने वास्ते पूरी तरह नाल डटी हुई है। वे उन नाल मिलन आया जम्मू खिता का कई वफदा नाल गल कर रहा था। वजीर मौसूफ ने महकमा जल शक्ति का अफसरों ना जमीनी सतह पर जायजो ले गए अवाम वास्ते पीण का साफ पानी की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने की हदायत दीती। खुराक सिविल सप्लाईज ते अमृतसर फील महकमा का कमिश्नर सैक्रेटरी सौरभ भगत आज तमाम जिलों का डिप्टी कमिश्नर और सीनियर अफसर के नाल एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंतजामिया का वादा और सार्फिन बेहतर खिदमात फराहम करने वास्ते किया जा रहे इकदामों को जायजो लियो। मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा वास्ते महकमा की तैयारियों को भी जायजो लियो गयो। ये खबरतम आकाशवाणी श्रीनगर तू सुन रहे हैं। खबरतम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकें। लेफ्टिनेंट गौरव मनोज सिन्हा ने सपोर्ट शूटर जसपाल राणा का फोत होने पर सदमा को इजहार किया है। एक ताजीती पैगाम में LG ने कहा है जे अनजहानी बेशुमार एथलीट्स का रोल मॉडल था ते उन्होंने मुख्य मुकाबला में बेमिसाल कारकर्दगी को मुजाहिरा करके मुल्क को नाम रोशन किया है। LG ने जसपाल राणा का सोगवार कुंभा के नाल हमदर्दी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवान JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनस मीर का इंतकाल पर सख्त रांझो गम को इजहार कियो है। अपना अलग अलग ताजीती पैगामों में उन्होंने सोगवार कुंभा के नाल हमदर्दी जाहिर की है। याद रह जे 2019 बैच का JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनस मीर इस वेले हैंडीक्राफ्ट हैंड एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर का अहदा पर तैनात था। जम्मू कश्मीर ने मनशियात की लानत तो छुटकारो दवाण वास्ते 100 त्याड़ा और मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी शदो मद नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गौरव मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालफ प्रोग्रामों और इकदामों की निगरानी कर रहा है। मनशियात के खिलाफ LG को पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत पर काबू करने वास्ते दरकार इकदामों और लोगों की जिम्मेदारियों बारे वादी का एक समाजी कारकुन सरवत हिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं। क्यों
2: हमारे कश्मीर में हमारे नौजवान हैं, टीन एजर्स हैं, ये गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं, खासकर जो ये ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलव्वस हो रहे हैं। लेकिन इससे ओवरकम होने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बच्चे हैं इनको हमें वापस लाना पड़ेगा, इनको हमें रिहैब करना पड़ेगा, इनको हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम, और वो एग्रेसिवली और ज्यादा इसमें कार्रवाई करें ताकि ड्रग्स जो ये गंदगी यहाँ पे फैले इसको जड़ से खत्म किया जाए। इसके अलावा जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं, खासकर जो हमारे माँ बाप है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं आजकल।
0: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला बड़गाम में मनशियात के खिलाफ बेदारी रसाई और नफाज की सरगर्मी जारी रखता हुआ कई प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इन प्रोग्रामों का मकसद मनशियात का इस्तेमाल के खिलाफ कोशिश ना बादो देनो और एक सेहतमंद मनशियात पाक माशरा ना बादो देनो है। पुलवामा का MLA वहीदुर रहमान परा ने पुलवामा काकापुरा पंपोर सड़क की खस्ता हालत व मायूसी को इजहार करता हुआ कहा है जी इस सड़क पर फौरी तौर तजदीद और मरम्मत करनी लोड़ है। एक बयान में उन्होंने कहा है जी यह इंतहाई अहम सड़क इलाका का आम लोगों के नाल नाल तजारत इक्तसादी तरक्की की राहदारी भी है। जम्मू में शुमाली जून का लेजान अफसर की 2000

0: 26वीं कॉन्फ्रेंस जारी है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कल तो हुई थी, जिसमें शुमाली रियासत और मरकज गए जेर इंतजाम इलाका नाल तालक रखने वाला टैक्सटाइल सैक्टर का लिजान अफसर ते दूजा नुमाइंदा शिरकत कर रहा है। कॉन्फ्रेंस को एहतमाम कपड़ों की वजारत के तहत काम करने वाली टैक्सटाइल्स कमेटी ने की है। जम्मू कश्मीर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का एहतमाम नाल होयो सनतकारी को तरबीती प्रोग्राम कामयाबी नाल मुक गयो। वुमेन्स आईटीआई जम्मू की संजाली नाल मुनक्कद किया गया इस प्रोग्राम में 32 कालसरिया ने शिरकत कर गए कारखानादारी की तरबियत हासिल की। हुकूमत ने अदारा जाति सनती और तजाती सार्फीन वर रिटेल पेट्रोल पंपों ना डीजल ते पेट्रोल खरीदन वर पाबंदी आयद की है। उन्होंने अपनी जरूरियात मखसूस कंज्यूमर पंपों नाल पूरो करन की हदायत दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून न मुनक्कद होने वाला नीट अंडर ग्रेजुएट दाखला इम्तहान का दौरानिया में 15 मिनट को वादो कियो है। इस तरह इम्तहान 180 मिनट तू बढ़ा गए 195 मिनट कर दितो गयो है। NTA ने कहो है जे वे दाखला इम्तहान ना शिफाफ तरीके मुनक्कद कराने वास्ते पुरजम है। तो इसके नाल खबरनामो मुक गयो। अगलो खबरनामो 6:05 पर आकाशवाणी तू कश्मीरी में नशर वैगो। दियो इजाजत, रब रखो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में

0: सीईओ सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के आईटीआई तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत एआई मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत एआई मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस आकाशवाणी हिंदू श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 77.8 मीटर एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज बैंड शबजित 5 मिनट सपेद बोलो बोजो गमी बाय हिंदी खदर सोने जुक प्रोग्राम।

فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي

रोजान। प्रोग्रामिक प्रोड्यूसर च वसीम फारूक वानी। यह चु आकाशवाणी हों श्रीनगर स्टेशन। मीडियम वेव जहा तरहट आशारिया अठक मीटर तो एफ एम अख त्रे आशारिया पांच मेगाहर्ट्ज़ बिट। सैलानस प्रू

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बज रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप अशफाक लोन से आज का शहरबीन समाप्त करेंगे।

0: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए

0: लाइन पर पड़ी, जिसकी वजह से ठाठी और किश्तवाड़ के बाद इलाकाजात में बिजली की सप्लाई मुनकता रही थी और तेज हवाओं के नतीजे में ट्रांसमिशन लाइन में बार बार खलल आने का सिलसिला जारी रहा। आसमानी बिजली गिरने का तीसरा वाका इलाका सदान में पेश आया, जहां कब्रिस्तान के करीब एक घर में आग लगी। मुकामी लोगों की कावशों की वजह से आग को मजीद फैलने से रोकथाम हुई, मगर रायशी ढांचे को जज्वी नुकसान हुआ है और कब्रिस्तान के मुतसिल एक कायल सरसब्ज दरख्त भी आसमानी बिजली गरजने से खाकसर हुआ, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। JPDCL हुकाम ने शहरबीन को बताया कि ग्रिड स्टेशन पर आसमानी बिजली गरजने से तकरीबन 9 लाख रुपया नुकसान हुआ है और अभी नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। अंदेशा है कि नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। गुज़श्ता कई रोज से खिताई चुनाव के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं, झालाबारी बारिशों व आसमानी बिजली गरजने का सिलसिला बना हुआ है।
1: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। समन वादी के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मुतवातिर मौसूल हो रही है कि महकमा आबपाशी रवा सीजन में आबपाशी की हद दर्जे जरूरत होने के बावजूद अपने फराइज अंजाम देने में यक्सर नाकाम हो चुका है। वज़ीर के महकमे ने अप्रैल के अवाखिर में यकीन दिलाया था कि मई के अवाइल से ही वादी में आबपाशी सहूलियात नुमाया तौर पर बेहतर होंगी और किसानों को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जमीनी सूरत हाल कुछ और है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से रहीम रिजवान।
2: हजारों कनाल अराजी आबपाशी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाइस बंजर बन चुकी है। पूरे इलाके की अराजी को सैराब करने वाली सिंध कनाल मरम्मत तलब हुई और जगह जगह इस कनाल में ब्रीचेस हुए, जिससे इस कनाल में से बहने वाला पानी मुख्तलिफ मकामात पर जाया होता है, जिसके नतीजे में एक तो यहाँ के किसानों को हर साल सिंचाई के लिए पानी मैसर नहीं हो पा रहा है और दूसरा इन इलाकों बशमूल श्रीनगर के कुछ इलाके पीने के पानी से भी महरूम रहते हैं। अगर के महकमे इरीगेशन ने इस साल यक के बाद दीगरे 3 बार शट डाउन करवा के मधपुरा कनाल की मरम्मत कराई, तमाम उस काम से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा और वो गुज़श्ता बरसों की तरह इस साल भी खेती बाड़ी के इस पीक सीजन में आबपाशी सहूलियात से महरूम है। नतीजतन उनकी दान की पनीरी सूख चुकी है। मकामी किसानों ने इल्जाम लगाया कि चंद साल कबल साबिका MLA गांधरबल ने PHE और इरिगेशन कनाल को सेपरेट करने के लिए 21 करोड़ रुपए वागुजार किए थे, जिसका एतराफ साबिका MLA गांधरबल ने भी किया। अलबत्ता वो 21 करोड़ किस काम पर खर्च किए गए वो अभी तक मालूम न हो सका और इस काम के लिए जो 48 इंच पाइप लाइन वागुजार की गई थी वो अभी तक नस्ब क्यों नहीं की गई। मकामी किसानों और एक्स MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार ने जिला इंतजामिया और सरकार से मुतालबा किया है कि इस गपले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और फलाही कामों के लिए सरकारी खजाने से निकाले गए रुकूमात की जांच पड़ताल की जाए। इधर अभितार कोरक बटवीना खरबा गुजामा शेखजू आहन नस्बल और दीगर मुनिका इलाकों के किसान आपाशी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाइस तरह तरह के मुश्किल से दो चार हैं। मकामी किसानों ने महकमा इरीगेशन गांधरबल की नाकस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी लापरवाही और अदम तवज्जुही से किसानों को हर साल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी धान की पनीरी सूख जाती है। हालांकि किसान उन्हें बार बार मुतल्ला करते रहते हैं कि यहाँ के आपाशी कोहलों की मरम्मत और तजदीद और सफाई सुथराई वक्त पर कराई जाए। अलबत्ता मुतल्लका महकमा बाखबर होने के बावजूद हर साल लैतुलैल से काम ले रहा है, जिस पर किसानों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है।
1: जिला गांधरबल में नाकिस आबपाशी सहूलियात, रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी तनाजुर में जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम से फारूक राथिर ने यह मरासरा इरसाल किया है।
3: वादी कश्मीर की जरखेज जमीनें इस वक्त धान की पनीरी के अहम मरहले से गुजर रही हैं। हर साल जून का महीना किसानों के लिए उम्मीद, मेहनत और खुशहाली पैगाम लेकर आता है। खेतों में लहलाती पनीरी किसानों की दिन रात की मसरूफियात और आबपाशी के लिए बहते नदी नाले एक दिलकश मंजर पेश करते हैं, लेकिन इस साल ये मंजरनामा तशवीश और बेयकीनी की तस्वीर बन गया है। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों बशमूली देवसर, होमशाली बुक, कुलगाम, काजीगुंड, नूराबाद और इलाका कोण के साथ साथ दीगर इलाकों में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। जिला भर में गुजरने वाले अहम आबी जराया नाला वेशव, दत्तेत्रू, खिदर, सनमन, लामड़ी, नूराबाद कनाल, बानी लाद, गुमतू कनाल और टेडबुजी कनाल के साथ साथ दीगर कई नदी नालों में पानी की सतह गैर मामूली तौर पर कम हो चुकी है। कई मकामात पर नदी नाले महज एक बारीक दार की सूरत

0: में बह रहे हैं, जबकि बैस जगहों पर पानी न होने के बराबर रह गया है। जमींदारों का कहना है कि धान की काश्त मुकम्मल तौर पानी पर मुनसर होती है। पनीरी को खेतों में मुंतकल करने और फसल की इब्तदाई नशोनुमा के लिए वाफिर मकदार में पानी नागुजीर है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बेशतर खेत खुशक पड़े हैं। किसानों की मेहनत, सरमाया और साल भर की रोजी रोटी खतरे में दिखाई दे रही है। पानी की कमी और आदमी दस्तयाबी ने इसमें शदीद बेचैनी पैदा कर दी है और वो आसमान से बारिश और मुतलका इदारों से पूरी इमदाद के मुंतजर है। इलाके के जमींदारों के मुताबिक गुजशत कई बरसों में जून के महीने में पानी की ऐसी किल्लत कम ही देखने को मिली है। इनका कहना है कि अगर आइंदा चंद दिनों में बारिशें ना हुई और आबी वसाइल के बेहतर इंतजाम के लिए हंगामी इकदाम न किए गए तो धान की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है।
1: ये थे कुलगाम से फारूक राठौर। हमने रहीम रिजवान और फारूक राठौर की रिपोर्टों के तनाजुर में अभी कुछ वक्त पहले चीफ इंजीनियर महकमा इरीगेशन शौकत हुसैन से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया।
2: गंदरबल का मसला है जनाब, पहले ये कमी इस वजह से थी पानी की कि वहाँ जो ओल्ड गंदरबल हमारा ये पावर हाउस कर रहा था, कल से हमने वो भी बंद करवा दी है। अब वो तकरीबन 30 क्यूसिक पानी हमारा बढ़ गया है, उससे अब हमारा गंदरबल इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। बाकी जहाँ जेलम की बात आप कर रहे हो सर, जेलम में पानी जो है काफ़ी सतह ढोन हो गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी हमें आ रही है। वहाँ इस वक्त हमारी आप ये बात कर रहे थे कुलगाम की, एक और हाल स्कीम है जो इस वक्त बैठी है, बाकी सब स्कीमें चल रही हैं। एक वो स्कीम हमारी यहाँ के पानी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, हमने जेलम के सेंटर में वहाँ बंद क्रॉस बंड बांध के, तो आज वो स्कीम भी हमने चला दी है।
1: गांधरबल जिले के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो कनाल था, जो आपको मालूम है कि एट द सेम टाइम वो आबपाशी के लिए भी और पीने के पानी के लिए भी कैटर किया करता था, और फॉर्मर MLA ने उसके लिए बड़ी रकम मुख्तस की थी, लेकिन अभी तक वो उस पैमाने का काम नहीं कर पा रहा है जैसा कि होना चाहिए था।
2: जनाब मुझे इसकी इलम नहीं है इस चीज़ का कि किसी फार्मर MLA ने कोई इसमें दिया हो, क्योंकि ये स्कूल के ये अपने कनाल है जो SP कनाल है, इसको जेके SPDC ही देखती थी। इस साल हमने उस पर 2 करोड़ रुपया लगा के जो थोड़ा रिपेयर का काम करना था वो हमने इरीगेशन साइड से हमने इस बार किया है, और इससे पहले कोई इतनी बड़ी रकम इस पे नहीं आई है। जो भी काम किया है इससे पहले इसने किया है, जेके SPDC ने किया है।
1: आपपाशी कनालों में कोहलों की जो सफाई सुथराई होती है, उनकी बहाली होती है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो आपके मकामी अहलकार हैं वो बहुत सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, सफाई सुथराई प्रॉपरली नहीं हो पा रही, ये भी एक वजह है कि पानी का फ्लो जो है वो सही नहीं है।
2: असल में सर डिसिल्टिंग का मसला ये है कि डिसिल्टिंग जो है 5 क्यूसिक से कम, 5 क्यूसिक या 5 क्यूसिक से कम जितने भी कैनाल हैं ये RDD डिपार्टमेंट या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी हुई है, डिसिल्टिंग उन्होंने करनी थी। अच्छा, जो मेन कनाल है हमारी उसके लिए तो हम कर रहे हैं, जहाँ मेन कनाल पे डिसिल्टिंग, जहाँ सम्प क्लियर करने थे या इस तरह का मसला था वो डिसिल्टिंग हम कर रहे हैं।
1: ये थे चीफ इंजीनियर महकमा इरीगेशन शौकत हुसैन। PDP के लीडर जफर मीर लसजन ने आज चाड़ूरा तहसील के एक अवामी वफद की क्यादत करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार से मुलाकात की और उनकी दानिस्त में कुजवेरा में बेकार पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट का मामला लाया। जफर मीर लसजन ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बताया कि कुजवेरे का फिल्ट्रेशन प्लांट बेकार होने के बाइस तहसील चाड़ूरा के मुतअद्दिद देहात को नासाफ पानी फराहम किया जा रहा है, जो अक्सर बेशतर कई अमराज का मोर्जी बनता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार ने यकीन दिलाया कि मुतालिका अफसरान को इस मसले का सदेबाब करने की फौरन हिदायत दी जाएंगी। इधर JDU के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों और तिब्बी इदारों में डॉक्टरों की खासी किल्लत पाई जा रही है, जिसके 22 मरीजों को माकूल तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से इस बारे में मुदाखलत करने की फौरी अपील की है। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर कि लिटरेरी फोरम बंडपुर की तरफ से कल 13 जून को सुबह 10 बजे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बंडपुर में यौम रशीद नाजगी मनाया जा रहा है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म होता है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाइए।
4: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार, अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान, रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
5: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून

0: वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
4: तो क्या शकने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल का इस्तेमाल करान?
3: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
4: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
3: मगर ये है सठा द्रो?
4: हाँ ना ना सुई कमत मज मुश्क ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
5: पनुन तो पन्ने आयाले जिंदगी बनायू सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयू। बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in
6: पर। इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जे एंड के।

ये बात काबिल जिक्र है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे की आज सर 9 मुरम्मत और रीसर्फेसिंग के लिए रनवे को 16 दिन के लिए बंद करने की तजवीज़ रखी गई है। इससे कबल वजीर आला ने कौमी राजधानी में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में भी शिरकत की, जहां उन्होंने रोजगार, सियाहत, बुनियादी ढांचे और तरक्याती तरजीहत को उजागर किया। दरियासना वादी के एक मारूफ फनकार और गुलकार वहीद जिलानी ने वजीर आला से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के फनकारों के मसाइल मुतालिका मरकजी वजरा की नोट्स में लाएं। वजीर सेहत सकीन ऐतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तकम बनाने और तिबी खदमात की फराहमी में बेहतरी लाने की वादाबंद है। वजीर मौसुफा ने श्रीनगर जिले में खानियार और हजरतबल इंतखाबी हलकों का दौरा करने के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने आम लोगों से ताकीद की कि वो तिबी इदारों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर और एमएलए हजरतबल सलमान अली सागर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी उनके हमराह थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सती शर्मा ने सस्ती, काबिल एतमाद और मौसर ट्रांसपोर्ट खदमात की फराहमी में JKRTC के अहम रोल को उजागर किया है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 88वीं मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कारपोरेशन को जदीद माली तौर पर पायदार और मुसाफिर मवाफिक इदारे में तब्दील करने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान JKRTC मुलाजमीन के लिए 7वें पे कमीशन की स्केलों के नफाज की मंजूरी और कई दीगर खदशात और मसाइल पर भी गौरखोज किया गया। जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत मुआशरे के हर तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पुराजम है। वो उनसे मिलने आए जम्मू खत्ते के कई वफूद से बात कर रहे थे। वजीर मौसुफ ने महकमा जल शक्ति के अफसरों को जमीनी सतह पर जायजा लेकर आवाम के लिए पीने के साफ पानी की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। बैन रियासती कानून साज तावन की जानिब एक कदम बढ़ाते हुए कर्नाटक कानून साज असम्बली की पेटिशन से मुतालिक कमेटी ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठौर और पेटिशंस कमेटी के मेम्बरान के साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर दोनों कानून साज असम्बलियों की मजकूरा कमेटियों के काम के तरीकेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की इथिक्स कमेटी के चेयरमैन निजामुद्दीन भट्ट की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान लेजिस्लेटिव एहतसाब से मुतालिक इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लिया गया। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज तमाम अजला के डेप्टी कमिश्नरों और सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंतजामिया के फरोग और सार्फिन को बेहतर खदमात फराहम करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए महकमे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। गांधरबल में आज महकमा ज़राअत के अहतमाम से खेत बचाओ अभियान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमे की सेक्रेटरी नीतू गुप्ता ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने माहौलियाती एतबार से पायदार ज़रई सरगर्मियों को फ़रोग देने की अहमियत उजागर की। उन्होंने किसानों से नामियाती काश्तकारी के तौर तरीकों को अपनाने की ताकीद की। प्रोग्राम के दौरान नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने गांधरबल ज़िले में ज़रई मंजरनामे का खाका पेश किया। इस मौके पर किसानों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट शूटर जसपाल राणा के फौत होने पर सदमे का इजहार किया है। एक ताजियती पैगाम में LG ने कहा है कि अनजानी बेशुमार एथलीट्स के रोल मॉडल थे और उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया। LG ने जसपाल राणा के सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवान JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर के इंतकाल पर सख्त रंजोगम का इजहार किया है। अपने अलग अलग ताजियती पैगामात में उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। वाजह रहे कि 2019 बैच के JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर इस वक्त हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मनुष्यात के खिलाफ LG का पैगाम।

0: पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सामाजिक कारकुन सरवत हिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हमारे कश्मीर में हमारे नौजवान हैं, टीन एजर्स हैं, ये गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं, खासकर जो ये ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलव्वस हो रहे हैं। लेकिन इससे ओवरकम होने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बच्चे हैं इनको हमें वापस लाना पड़ेगा, इनको हमें रिहैब करना पड़ेगा, इनको हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम, और वो एग्रेसिवली और ज्यादा इसमें कार्रवाई करें ताकि ड्रग्स जो ये गंदगी यहाँ पे पहले इसको जड़ से खत्म किया जाए। इसके अलावा जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं, खासकर जो हमारे माँ बाप है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं आजकल।
1: मनुष्यात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने पुलवामा जिले के सांबुरा इलाके में शबीर अहमद खान नामी ड्रग स्मगलर की जायदाद अटैच की। गांधरबल में पुलिस ने शालबुग के रहने वाले फयाज अहमद खांडे नामी मनुष्यात फरोश को गिरफ्तार किया है। हंदवारा में पुलिस ने जमीन के एक रुकबे पर उगाई भंग की बड़ी मिकदार को तबाह कर दिया। अनंतनाग में ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। IGP कश्मीर वी के बिरदी ने आज पुलिस अफसरों की एक मीटिंग तलब करके मुहर्रम की आमद, श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत और मेला खीर भवानी के इनेकाद के लिए पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस फोर्स के मुख्तलिफ शोबों के अफसरान ने उन्हें इस सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में तफसीली जानकारी दी। दरियासना श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में आज पुलिस की जानिब से एक मॉक ड्रिल का एहतमाम हुआ। गांधरबल में जिले के SSP सुधांशु धामा की सदारत में मुनाकिदा मीटिंग में यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खलीफा दोम सईदना हजरत उम्र फारूक रजील्लाह ताला अनहु के योम शहादत के सिलसिले में अपने एक पैगाम में कहा है कि हजरत फारूक अजम रजील्लाह ताला अनहु की हुक्मरानी अदलो इंसाफ पर मबनी रही है। मौसूब ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में हाजिरी देकर वहां नमाज जुमा अदा की। इस दौरान हजरत फारूक अजम रजील्लाह ताला अनहु के योम शहादत के सिलसिले में वादी की खानकाहों, मसाजिद और ज़ियारतगाहों में योम मजालिस का इनकाद हो रहा है। पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली सरकार ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। BJP जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा जम्मू में कई मुअज्जज शहरियों के साथ मुलाकात करके आम लोगों की तरक्याती जरूरियात और मरकज में NDA हुकूमत की 12 साल की हुसूलयाबियों पर तबादला ख्याल किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने आज काजीगुंड में नव्यू टनल का दौरा करके वहां मुसाफिरों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। पुलवामा के MLA वहीदुरहमान पर्रा ने पुलवामा काकापोरा पांपोर सड़क की खस्ता हालत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि खित्ते के सबसे बड़े सनती मराकिज को जोड़ने वाली ये सड़क फौरी तजदीद मरम्मत का तकाजा करती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अहम सड़क इलाके के आम लोगों के साथ साथ तिजारत और इक्तसादी तरक्की की राहदारी भी है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर के तिबी इदारों में बकौली उनके डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के नतीजे में मरीजों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। GM शाहीन ने इस मसले को हल करने के लिए जरूरी इकदाम करने का सरकार से मुतालबा किया है। वजारत खारजा की जानिब से शुरू किए गए पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत कारगिल में 15 और 16 जून को मोबाइल पासपोर्ट वैन सहूलियात दस्तियाब रही गई हैं। श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिसर BS रावत ने कहा कि इस खदमत से मुल्क के बाशिंदों को आसान तरीके पर

0: पासपोर्ट फराहम करने के सरकार के अज़्म का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि यह सेवा मजकूरा तारीखों पर बेमाथांग कारगिल के सियाहती सहूलत मरकज पर दस्तियाब रहेगी। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एहतमाम से मुनाकिदा सनतकारी का तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर हो गया। विमेन्स आईटीआई जम्मू के इश्तराक से मुनाकिद किए गए इस प्रोग्राम में 32 खवातीन ने शिरकत करके कारखानादारी की तरबियत हासिल की। इख्तामी तकरीब पर मुकर्रीन ने तरबियत हासिल करने वाली खवातीन से ताकीद की कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून को मुनाकिद होने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तिहान के दौरानिया में 15 मिनट का इजाफा किया है। इस तरह इम्तिहान बवक्त 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि वो दाखिला इम्तिहान को शफाफ तरीके पर मुनाकिद कराने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने इदारा जाती सनती और तिजारती सार्फिन पर रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल खरीदने पर पाबंदी आयद की है। उन्हें अपनी जरूरियात मखसूस कंज्यूमर पंपों से पूरा करने की हिदायत दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह फैसला मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के नतीजे में सप्लाई चेन में पैदा होने वाली रुकावटों को नजर में रखते हुए लिया गया है। जम्मू में शुमाली जोन के लाइजन अफसरों की 2026 की कॉन्फ्रेंस जारी है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल से हो गया, जिसमें शुमाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले टेक्सटाइल सेक्टर के लाइजन अफिसर और दीगर नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कपड़ों की वजारत के तहत काम करने वाली टेक्सटाइल कमेटी ने किया है, जिसने सनत से जुड़े मामलात, पॉलिसी दरामद, अमल दरामद, मियारात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। बड़गाम जिले के खान साहब इलाके में कायम एक प्राइवेट स्कूल की बस को आज जिले के सुरसियार इलाके में हादसा पेश आया। हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने हुकाम का हवाला देकर खबर दी है कि हादसे में बस के ड्राइवर की मौत वाका हुई, जबकि दो तालिबे इल्म जख्मी हुए। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं मुबशिर रफाई। हालिया दिनों वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नई दिल्ली में मसरूफियात ने एक बार फिर इस हकीकत को उजागर किया है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकज और मकामी हुकूमत के दरमियान मजबूत राबिता और मौसर शराकत दारी नागुजीर है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के इजलास में शिरकत, वजीर अजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और मरकजी वजीर रेलवे और शहरी हवाबाजी के वजीर के साथ तबादले ख्याल दरअसल इसी सिलसिले की अहम कड़ियां हैं। नीति आयोग के इजलास में वजीर आला ने जम्मू कश्मीर की तरक्याती जरूरियात और इम्कान को कौमी सतह पर उजागर करते हुए खसूसी इमदादी पैकेज, पन बिजली के शोबे में सरमायाकारी, सियाहत के फरोग, जरी व बागवानी शोबों की मजबूती और सेहत के बुनियादी ढांचे में तोसी जैसे अहम निकात पेश किए। जम्मू कश्मीर कुदरती वसाइल, सियाहती कशिश और इंसानी सलाहियतों से मालामाल खित्ता है, ताहम दुश्वार गुजार जुग्राफिया और महदूद बुनियादी ढांचे की वजह से इसे खसूसी तवज्जो की जरूरत रहती है। सियाहत के शोबे में रिकॉर्ड आमद और जरिए व बागवानी सरगर्मियों में वसत इस बात का सबूत है कि मुनासिब पॉलिसियों और सरमायाकारी के जरिए खत्ते की मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। खसूसन सेब की सनत, दस्तकारी, खुशबूदार व अद्वियाती पौधों की काश्त और छोटी सनतें लाखों अफराद के रोजगार से वाबस्ता हैं। ऐसे में इन शोबों की तरक्की के लिए इदारा जाती तआवुन वक्त की अहम जरूरत है। इसी तनाजुर में वजीर आला की मरकजी वजीर रेलवे से मुलाकात भी गैर मामूली अहमियत रखती है। कश्मीर रेलवे राबता न सिर्फ सफरी सहूलत का जरिया है, बल्कि खत्ते की मईशत के लिए एक नई शाहरा भी साबित हो सकता है। बिलखसूस सेब के सीजन के दौरान रेलवे खदमात में इजाफा बागवानी शोबे को नई ताकत फराहम कर सकता है, जिससे किसानों को अपनी पैदावार मुल्क की बड़ी मंडियों तक कम वक्त और कम लागत में पहुंचाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम से मुलाकात में भी इक्तिसादी तरक्की, सियाहत के फरोग और अवामी

और आईनी मंसूबे भी सियासी तनाजे का बाइस बन रहे हैं। जमीन वहां ये बहस जोर पकड़ रही है कि विफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के तहत सूबों को मिलने वाले वसाइल और अखराजात के निज़ाम में तब्दीलियां लाना चाहती है। पीपल्स पार्टी समेत कई सियासी क़वतों का ख्याल है कि विफाक अगर सूबों के माली वसाइल कम करने की कोशिश करता है तो ये 18वीं आईनी तरमीम की रूह के मुनाफी होगा। ये तासुर भी मौजूद है कि बाज़ हुकूमती और रियासती पॉलिसी साज हल्के 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकल किए गए बाज़ इख्तियारात पर नज़रसानी के ख्वाह हैं। सबिन कराची और गवादर जैसे अहम इक्तिसादी और साहिली शहरों के इंतजामी और माशी मामलात में विफाकी किरदार बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। अगरचे ऐसी किसी तजवीज़ की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम सिर्फ इस बजट ने ही सिंध और बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को मोहतात कर दिया है। सबिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पाकिस्तान की विफाकी सियासत पर हमेशा असरअंदाज होते रहे हैं। अगर वहाँ किसी सियासी जमात को नुमाया कामयाबी हासिल होती है तो उसके असरात इस्लामाबाद की सियासत में भी महसूस किए जाते हैं। इन इंतखाबात के नताइज ये बताएंगे कि अवाम मौजूदा विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को किस नज़र से देख रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या मकामी जमातें बेहतर कारकर्दगी दिखाती हैं तो हुकूमत के नाकदीन इसे विफाकी पॉलिसियों पर अवामी अदम एतमाद के तौर पर पेश करेंगे, जिससे पाकिस्तान की सियासी जमातें विफाकी हुकूमत पर दबाव डालने की पोजीशन में आ सकती हैं। इन तमाम अवामिल को यकजा किया जाए तो ये वाज़ह नजर आता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए आने वाले चंद माह इंतहाई अहम और फैसला कुन होंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि अक्सर हुकूमतें अपोजिशन से ज्यादा अपने इत्तेहादियों के इख्तलाफात की वजह से मुश्किलात का शिकार हुई। आज भी वहां सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, ताहम अगर इख्तलाफात बढ़ते गए, माशी मुश्किलात बरकरार रहे तो पाकिस्तान में संगीन सियासी बहरान के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। सभी प्रोग्राम में आपसे करेंगे और भी बातें। आज जुमतुल मुबारक है, पहले फैज़ याब होते हैं इस हमदी बारी ताला से।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। जमीन गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ आज भी वही खड़े हैं जहां सदियों पहले खड़े थे। दरियाओं का पानी आज भी उन्हीं वादियों से गुजरकर पाकिस्तान को जिंदगी बख्श रहा है। लेकिन एक चीज है जो हर चंद साल बाद बदल जाती है, और वो है सियासत का बयानिया। वहां चेहरे बदलते हैं, जमातें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, मगर हैरतअंगेज तौर पर सियासत का बुनियादी ढांचा वही रहता है। इस बार भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मैदान में कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। एक जमात अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का जिक्र कर रही है, दूसरी अपनी तारीखी कुर्बानियों का तज़किरा कर रही है, और तीसरी जमात सियासी रुकावटों और मुश्किलात को अपनी इंतखाबी मुहिम का मरकज बना रही है। जलसों में जज्बात हैं, शिकायात हैं, माजी के किस्से हैं, लेकिन अगर एक आम वोटर के जाविये से देखा जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम बयानियों में गिलगित बल्तिस्तान कहाँ है। सबिन गुज़श्ता कई दहाइयों से सियासी जमातों ने वहां अवाम को अपनी कारकर्दगी से ज्यादा अपनी मजलूमियत की दास्तानें सुनाई हैं। कभी किसी रहनुमा को इख्तदार से हटाए जाने का दुख सुनाया जाता है, कभी किसी जमात को दीवार से लगाए जाने की शिकायत की जाती है, कभी किसी सियासी खानदान की कुर्बानियों का हवाला दिया जाता है, और कभी किसी सियासी कारकुन के साथ होने वाली ज्यादती को इंतखाबी मुहिम का मरकज बनाया जाता है। यूं महसूस होता है कि उस मुल्क में तरक्की, तालीम, सेहत और मईशत से ज्यादा मजलूमियत एक सियासी सरमाया बन चुकी है। यह सिर्फ एक जमात का मसला नहीं, मुस्लिम लीग नून अपने सियासी सफर में बारहा इस मौके को सामने लाती रही है कि उसकी क़यादत को इक्तदार से अलग किया गया है और उससे अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। पीपल्स पार्टी अपनी तारीख को कुर्बानियों और सियासी जद्दोजहद की तारीख के तौर पर पेश करती है। तहरीक इंसाफ सियासी रुकावटों और इंतखाबी अमल से मुतल्लिक तहफुजात को अपना बुनियादी मुकदमा बनाती है। यूं तीनों बड़ी जमातों के बयानियों में एक मुश्तरक अंसर वाज़ेह नजर आता है, और वो है मजलूमियत का एहसास। सबिन, यहां सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत, सवाल ये है कि क्या आवाम के मसाइल भी उसी शिद्दत से जेर बहस आते हैं जिस शिद्दत से सियासी मजलूमियत के बयानिये पेश किए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के एक नौजवान के लिए शायद ये जानना ज्यादा अहम हो कि उसे रोजगार कब मिलेगा। एक कारोबारी शख्स के लिए ज्यादा अहम सवाल यह है कि बिजली की लोड शेडिंग कब खत्म होगी। एक तालिब इल्म के लिए यह जानना जरूरी है कि आला तालीम और जदीद सहूलियात तक रसाई कैसे मुमकिन होगी। एक मकामी खानदान के लिए यह अहम है कि सेहत और बुनियादी सहूलतों का मैयार कब बेहतर होगा। समीन, बदकिस्मती से इंतखाबी जलसों में इन सवालात के तफसीली जवाब कम सुनाई देते हैं। इसके बजाय सियासी तारीख, माजी की शिकायत और मुखालिफिन पर तनकीद ज्यादा सुनाई देती है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि जज्बाती बयानिये फौरी वहां सियासी असर पैदा करते हैं। एक मुतासिर कुन नारा, एक दिल को छू लेने वाली शिकायत या एक जज्बाती दास्तान चंद लम्हों में वहां हजारों लोगों को मुतहरिक कर सकती है, जबकि तवानाई पॉलिसी, आईनी इस्लाहात या माशी मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू निस्बतन खुश्क और पीचीदा समझी जाती है। गिलगित बल्तिस्तान की सूरतहाल इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि ये सिर्फ एक इंतखाबी हलका नहीं, सी पैक का दरवाज़ा भी यही है, दुनिया के अहम तरीन आबी ज़खायर भी यही हैं, और सियाहत के बेशुमार मौके भी इसी खित्ते में मौजूद हैं। इसके बावजूद यहाँ के आवाम बरसों से बिजली, रोजगार, बुनियादी ढांचे और आइनी हैसियत जैसे मसाइल पर सवाल उठा रहे हैं। ये एक तलख हकीकत है कि कुदरती वसाइल से मालामाल खित्ता आज भी वहां

वादी की आवाज इस वक्त आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। सबिन कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत दरोग गोई के बगैर मुमकिन नहीं। सियासत

सिद्धानों के झूठ जब पकड़े जाते हैं तो वो उन्हें आसानी से सियासी बयान करार देते हैं। इसे कतई नज़र के इस झूठ के आम शहरियों और मईशत पर क्या असर पड़ते हैं। IMF के साथ माहिदा न हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में दिवालिया होने वाला है। आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए मुझे अपने कपड़े तक बेचने पड़े तो बेच दूंगा। ये सब जुमले आपकी समातों को मानूस लगे होंगे, क्योंकि इनमें से अक्सर जुमले सुन सुनकर वहां बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सियासतदानों के रिवायती झूठ खत्म होने को नहीं आ रहे। तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासतदानों के झूठ पर उनकी हुकूमतें खत्म हो जाती हैं और उन पर मुकदमे बन जाते हैं, मगर पाकिस्तान में यूं लगता है कि सियासत दरोग गोई के बगैर मुमकिन ही नहीं। इस ताल्लुक से माहरीन कहते हैं कि सियासत में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हुकूमत के साथ होते हैं जबकि दूसरे अपोजिशन पार्टियों के हामी। जो लोग हुकूमत में होते हैं उनका एक एक लफ्ज बैनुलअक्वामी ताल्लुकात, मईशत और लोगों पर असर डालता है। समीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का कहना है कि सियासत में झूठ तो बरसों से चला रहा है मगर टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में इसमें शिद्दत आ गई है। उनके बकौल पाकिस्तान गलत तरफ आगे बढ़ रहा है। समीन इंसानी हकूक की कारकुन डॉक्टर फरजाना कहती हैं कि अशरफिया चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो या किसी भी और इदारे से, उनके बोले गए झूठ आम आदमी की जिंदगी पर मनफी असरा डालते हैं और एक आम आदमी उन पर एतमाद खो बैठता है और आहिस्ता आहिस्ता एहसास बेगानी का शिकार हो जाता है। उनका कहना है कि आम आदमी जब बहुत अरसे तक डटाई से बोले गए झूठ सुनता है तो उसमें गुस्सा और बेचैनी बढ़ती है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिप्रेशन में चला जाता है और माशरे से बगावत बुलंद करता है, जैसे कि हमने बलूचिस्तान में तहरीकें देखी। माहरीन मजीद कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में साहिब इक्तदार अखलाकियात, जमहूरी रवायात और मजबूत किरदार जैसी सफात से नाआशना है। मगरबी माशरा पाकिस्तान को मायूब नजरों से देखते हैं कि यह कौम खुद को मुसलमान कहती है और हर बात पर गलत बयानी करती है। पाकिस्तान में इनका कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। मीडिया भी उनकी इस्लाह नहीं करता बल्कि तारीफ करता है कि किस जमात ने कितना मजबूत सियासी बयानिया बनाया है। इस पहलू पर कोई बात नहीं करता कि ये बयानिया कितना सच और कितने झूठ पर मबनी है। अगर आवाम की बात करें तो उनकी सियासी वाबस्तगियां बहुत गहरी हैं और शऊर बहुत कमजोर। समझिए थी चंद बातें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर इस नाते शरीफ से फैज़ याब होते हैं।

0: आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम वादी की आवाज़। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 8:30 हो रहे हैं।
2: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 का आगाज कल यानी 11 जून से बाकायदा तौर पर हुआ। ये वर्ल्ड कप कई एक मानों से मुख्तलिफ है। पहला मौका है जब इस

0: वर्ल्ड कप में 48 टीमें शिरकत कर रही हैं। ये वर्ल्ड कप मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुश्तरक तौर पर मुनक्द किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन तीनों ममालिक में अपने तौर से ओपनिंग सेरेमनी का एहतमाम रखा गया है। ग्रुप ए के इब्तदाई दो मुकाबले कल मैक्सिको में खेले गए। इससे कबल मैक्सिको में एक बेहद शानदार इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मैक्सिको से ही ताल्लुक रखने वाली ग्लोबल म्यूजिक स्टार शकीरा के अलावा जे बालविन, एफ्रोबीट स्टार बर्नाबॉय और लैटिन म्यूजिक स्टार डैनी ओशन ने परफॉर्म किया। मैक्सिको सिटी के तारीखी एजटीका स्टेडियम में मुनक्द की गई इस तकरीब के दौरान करीबन 82,000 अफराद ने शिरकत की। इन अफराद का कहना था कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें दुनिया के इस खेल के सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ है, जिस खेल को हम दीवानगी की हद तक चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मेजबानी के बायस आज पहली मर्तबा हमें इतनी बड़ी तादाद और अपनी फैमिली के साथ अपनी टीम यानी मैक्सिको का वर्ल्ड कप मुकाबले देखने का शर्फ हासिल होगा। 40 साल के बाद मैक्सिको को एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ है, जहां एक तरफ स्टेडियम के अंदर 82,000 तमाशाइयों के बीच ग्लोबल स्टार्स उस रंगारंग तकरीब को चार चांद लगाने में मसरूफ थे, जहां मुख्तलिफ रंगों और आइटम्स के जरिए बरअज़म अमरीका की रिवायात और यहां के कल्चर की अकासी की जा रही थी। वहीं दूसरी जानब इसी दौरान 1,000 के करीब अफराद स्टेडियम से बाहर एहतजाज करते हुए नजर आए। दरअसल ये उन अफराद के अहल खाना थे जो मंशियात के खिलाफ जंग या कार्रवाइयों के दौरान लापता हो गए हैं। मैक्सिको हमेशा से ही मंशियात की लपेट में रहा है। दुनिया के बड़े ड्रग स्मगलर्स यहां पैदा हुए हैं। ताहम फुटबॉल ही एक ऐसा खेल या जरिया है जो मैक्सिको जैसे मुल्क में एंटरटेनमेंट के हवाले से सबसे ऊंचा मकाम रखता है। इस रंगारंग इफ्ताही तकरीब के बाद दो मुकाबले मुनक्द किए गए, इन पर आगे बात होगी। पहले मकामी खेल सरगर्मियों पर एक नजर, कुपवाड़ा स्पोर्ट्स रिपोर्ट के साथ रईस मसरूर।
1: मौसम में बेहतरी और खुशगवार तब्दीली के साथ ही वादी कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर खेलों की सरगर्मियों में नुमाया तेजी देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का किरदार खास तौर पर काबिल जिक्र है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुपवाड़ा के जेर एहतमाम इन दिनों जिला सतह के मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं, जिनमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और फुटबॉल शामिल हैं। ये मुकाबले लड़कों और लड़कियों दोनों जुमरों में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 उम्र के ग्रुपों के लिए मुनक्द किए जा रहे हैं। कबड्डी और खो खो के मुकाबलों की मेजबानी हायर सेकेंडरी स्कूल त्रहगाम, जबकि वॉलीबॉल मुकाबले बॉयज हाई स्कूल चोगल में मुनक्द हो रहे हैं। कबड्डी के मुकाबलों में मुख्तलिफ तालीमी जोनों के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अंडर 17 गर्ल्स में जोन सोगाम ने जोन त्रहगाम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया, जबकि अंडर 14 गर्ल्स में जोन लंगेट ने जोन कुपवाड़ा को हराकर कामयाबी हासिल की। अंडर 19 गर्ल्स के फाइनल में जोन त्रहगाम ने जोन सोगाम को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। बॉयज कबड्डी मुकाबलों में अंडर 14 जुमरे का टाइटल जोन लंगेट ने जोन हंदवारा को हराकर जीता। अंडर 17 में जोन हंदवारा ने जोन राजवार को शिकस्त दी, जबकि अंडर 19 के फाइनल में जोन लंगेट ने जोन हंदवारा को मात देकर कामयाबी हासिल की। वॉलीबॉल मुकाबलों में बॉयज अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों जुमरों में टंगडार ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बिल तरतीब द्रगमुला, क्रालपोरा और हंदवारा जोन को शिकस्त देकर टाइटल्स अपने नाम किए। गर्ल्स मुकाबलों में जोन हंदवारा ने अपनी बर्तरी बरकरार रखते हुए अंडर 14 में जोन लंगेट, अंडर 17 में जोन द्रगमुला और अंडर 19 में जोन त्रहगाम को शिकस्त देकर तीनों जुमरों की चैंपियनशिप जीत ली। खो खो के मुकाबलों में जोन मावर का गलबा देखने को मिला। बॉयज के तीनों जुमरों में जोन मावर ने कामयाबी हासिल की। अंडर 19 के फाइनल में मावर ने त्रहगाम को, अंडर 17 में सोगाम को, जबकि अंडर 14 के फाइनल में जोन कुपवाड़ा को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसी दौरान जिला सतह की क्रॉस कंट्री दौड़ भी कामयाबी के साथ मुनक्द की गई, जिसमें 390 लड़कों और 350 लड़कियों ने शिरकत की। दौड़ को गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज से बॉयज हाई स्कूल गुशी तक मुनक्द किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हर जुमरे के 10 लड़कों और 10 लड़कियों को महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एजाजात से नवाजा गया। علاوہ از یہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت بھی محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کپوارہ کی جانب سے ضلع بھر میں مختلف کھیل سرگرمیوں، ٹورنامنٹس اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کا مقصد نوجوانوں کو منشی

0: शायद आगे कुछ कर सकता है जी। उसके बाद मेरी जर्नी और आगे बढ़ी, फिर मैंने 2006 में या 7 में मैंने स्टेट चैंपियनशिप जीती जम्मू में, जो अंडर 21 चैंपियनशिप होती है हमारी जूनियर, वो टाइटल मैंने जीता। तो उस बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल चैंपियनशिप के लिए, जो कि हर कोई स्टेट अपने टॉप टू प्लेयर्स को नेशनल इवेंट में भेजती है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरा नेशनल बेंगलोर में था, तो मैंने नेशनल में थैंक्स टू ऑलमाइटी मैंने टॉप 4 में पहुंचा, जिस बेस पे फिर मेरा इंटरनेशनल का सिलेक्शन हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 21 गोवा में 2007 में हुई, तो वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा कंपैरेटिवली बाकी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लीग स्टेज में मैंने 6 में से 4 मैच जीते, मैंने आयरलैंड, बेल्जियम, यूएई और सऊदी अरेबिया को हराया, और 2 मैच वहां पे थाईलैंड और सिंगापुर वाले से हारे। फिर नॉकआउट स्टेज में मैंने जॉर्डन ब्राउन, एक नॉन प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर जिसने प्रोफेशनल चैंपियनशिप जीती हुई है, तो उसके साथ मैंने फिर नॉकआउट स्टेज में अच्छी फाइट देकर फिर अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय मैच। तो फिर उस बेस पे मेरा जो स्टेट अवार्ड है, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और इस गेम में ऐसा पहला कोई जेएनके से प्लेयर था जिस बेस पे मुझे स्टेट अवार्ड मिला, ये उस टाइम पे 2013 में 10-13 कश्मीर के प्लेयर्स और जम्मू के भी कुछ 10-15 प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ 30 ऑलमोस्ट प्लेयर्स, उनको स्टेट अवार्ड मिला। और इस गेम में मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड जो स्टेट का मिला, ऑफ बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ 2007 ईयर का बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने नेशनल बहुत सारे रिप्रेजेंट किए, नेशनल में मैंने आई गेस 2-3 साल पहले हमारा चेन्नई में टॉप 5 में आया, मैं फिर से एक बार अच्छा परफॉर्म दिया और इनकरेजमेंट मिली कि मैं मतलब और परफॉर्म करूं। फिर मैंने लास्ट ईयर आई गेस एक ओपन ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट भी जीता अमृतसर में, तो शुक्र ऊपर वाले का कि फिर इस गेम में मैंने और इम्प्रूवमेंट लाई और अच्छा खेलता रहा। आज तक की अचीवमेंट्स में जो मैं अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फेज मेरा रहा है इस स्नूकर की जर्नी में, वो है कि मैं 8 बार स्टेट चैंपियन बना, जेएनके नंबर 1 बना 8 बार, जो कि पहला ऐसा कोई कश्मीर का खिलाड़ी है जिसने 8 टाइम्स स्टेट चैंपियनशिप जीती। और सबसे उसमें अच्छी बात रही कि मैंने 2015 से 19 तक कंसेक्यूटिव 5 टाइटल्स मारे स्टेट चैंपियनशिप के। फिर उसके अगली बार फिर रनर अप रहा एक दो बार। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे पॉपुलर गेम चाहे कश्मीर हो या हमारे पूरे इंडिया में हो, तो पॉपुलर गेम्स कुछ ही हैं, जैसे क्रिकेट ले लो नंबर 1 पे, फिर फुटबॉल है, बाकी गेम्स है। इस गेम की उतनी पॉपुलरिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है अभी। आई गेस अगर हम श्रीनगर की बात ले लें, कम से कम 1000-2000 जो यूथ्स हैं वो ये गेम खेलते हैं, और इसमें चेंजेस बहुत अच्छी आ गई है अभी तक। आज तक इस गेम को उस नजर से नहीं देखा जाता था कि ये इसमें कोई आगे स्कोप है। अब माशाल्लाह बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो इसमें आगे कुछ करना चाहते हैं। आजकल यूट्यूब पे देखते हैं अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस बड़े बड़े प्लेयरों के, प्रोफेशनल प्लेयरों के, हमारे परफॉर्मेंस भी देखते हैं, हम भी नेशनल में या बाकी किसी इवेंट में अच्छा खेलते हैं तो इंस्पायर होते हैं, तो वो भी चाहते हैं इस गेम को आगे वो रिप्रेजेंट करे, इंडिया लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे खेले। तो इस गेम का स्कोप तो डे बाय डे बढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं।
1: आज की स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: स्पोर्ट्स टाइम आपने सुना, प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे एजाज नाज की। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है, मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 MHz पर। समीन, आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। समय 8:45 हो रहे हैं, रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी खबरों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके

0: साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के 9 बजे हैं। चंद फिल्मी नगमे आप तक पहुंचाते हैं। आगाज़ में आपकी नज़र करते हैं रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। ये नगमा नगमा लिखा है जावेद अख्तर ने और नगमे की मौसीकी तरतीब दी है अनु मलिक ने।

फिल्म रिफ्यूजी से आपने ये नगमा सुना। अब आइए आप तक पहुंचाते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये नगमा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर उन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म तआवुन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आज़ाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निज़ामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर ज़रूरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख़्वाह इंतजामात किए जाएं। फ़ौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को ख़त्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूरोप के 2 मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत 14 जून को फ्रांस के शहर नीस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल फरवरी में फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी आलमी कलीदी शराकत दारी का दर्जा अता करने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ जनाब मोदी की ये पहली दो तरफा मुलाकात होगी। जनाब मोदी नीस से स्लोवाकिया रवाना होंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस के इवान वापस लौटेंगे जहां भारत आलमी खित्ते जनूब की अहम आवाज के तौर पर शिरकत करेगा। मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकज़ में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत

0: बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अपनी ज़मीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें मुनसिफाना कीमत देकर मगरबी बंगाल की हुकूमत आम आदमी की ज़मीनें ले रही है और इन ज़मीनों को BSF के हवाले कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मीन की मुंतकली का ये अमल जारी है और इस प्रोजेक्ट को कौमी सलामती का एक मामला करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरहदों पर बाड़ लगाने का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि दरअंदाजी को कतई रोका जा सके।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: मरकजी काबीना के सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका तरफ़ैन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत, रियासती सरकारें और ज़िला इंतज़ामिया नीट के दोबारा इम्तिहान को बिला रुकावट मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से गहरे तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे कबल इस माह के आगाज़ में जनाब सोमनाथन मरकज़ी हुकूमत और मुतालिका एजेंसियों के सेक्रेटरियों के साथ इंतज़ाम का जायज़ा ले चुके हैं। इधर NTA ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान की विंडो में 15 मिनट का इजाफा किया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये आकाशवाणी है। वजारत खारजा ने आज अमेरिका के शाज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाज़रानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक क़ुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तश्वीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैन अवी सरहदों में कारोबार के तहफ़ सलामती और इस्तेहकाम को कमज़ोर करती है। अमेरिका के शाज़ डिफियर से दरख्वास्त की गई कि वह अपने हुक्काम को भारत की सख्त तशवीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खत्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरीों की ज़िंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी LG को वजारत में तलब किया गया। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तिलात मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आबनाए हुरमुस से रवाना होने वाले भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाक़यात को कतई तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका ये बयान भारत की जानिब से अमेरिका के शॉज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज उमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी बहरी फ़ौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया था और वाशिंगटन पर लाकानूनीत पर मबनी कार्रवाई में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया था जिससे आलमी अमन और समुद्री सरहद की सलामती को ख़तरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और बैनुल अक़वामी बिरादरी से ज़ोर देकर कहा कि इसके लिए ज़िम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खेज साबित नहीं हुईं। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवज़ा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनक़द होने के बारे में बात करना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के ज़्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दे दी गई है। मज़ीद तफसील मगरबी एशिया के हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी एशिया के लिए ये नई सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुजव्वज़ा हमले रोक देने के सदर ट्रंप के ऐलान के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि खित्ते में वसीतर तनाव

0: को टाला जा सकता है। हालांकि ईरानी हुक्काम का कहना है कि किसी भी हतमी समझौते को मंजूरी नहीं दी गई है और कई अहम उमूर हल तलब हैं। अहम नुकात में ईरान का एटमी प्रोग्राम, मुंजमिद इसासों को जारी करना और आबनाए हुरमुज के अतराफ मुस्तकबिल में सिक्योरिटी बंदोबस्त शामिल हैं। इस सूरत हाल में जबकि मुज़ाकरातकार पसे पर्दा बातचीत में मसरूफ़ हैं, पूरे खित्ते में फौजी सरगर्मियां भी जारी हैं, जिससे यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई भी नाखुशगवार वाकया सिफारती पेशरफ्त को नाकाम बना सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: सियोल की एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक यूल को आज 30 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी बढ़ाने के लिए ड्रोन कार्रवाई का हुक्म देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ के ऐलान को जायज़ ठहराने का कसूरवार पाया। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जेल में बंद साबिक सदर को दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाने और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात का कसूरवार करार दिया। साबिक वज़ीर दिफा किम योंग हुन को भी इस कार्रवाई के दौरान उनके रोल की बिना पर 30 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक सदर यून ने शुमाली कोरिया को मुश्तैल करने के लिए अक्टूबर 2024 में ड्रोन मिशन का हुक्म दिया और मार्शल लॉ नाफिज करने का पस मंज़र तैयार किया। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए भारत को आलमी कायद बनाने की हुकूमत की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत अपनी जुर्रतमंदाना पहल की बदौलत उमंगों भरे इकदाम के जरिए आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और शमूलियत के साथ यकजा किया गया, जिससे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत की आवाज़ की गूंज सुनाई दी। भारत ने न सिर्फ अपने पुराने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया बल्कि नए दोस्त भी बनाए, जिससे मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक नई तवानाई पैदा हुई है। जबकि भारत पहले का नज़रिया मुल्क की खारजा पॉलिसी में लगातार सबसे ऊपर रहा। भारत की आलमी मसरूफियात में इंसानी बुनियादों पर मदद और कुदरती आफात के दौरान बचाव कार्रवाइयों ने अहम रोल अदा किया। श्रीलंका के शुमाली साहिल पर समंदरी तूफान दितवा की वजह से नवंबर 2025 में सैकड़ों लोग हलाक हो गए, हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस दौरान श्रीलंका के आवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज़ किया, ताकि श्रीलंका को फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और कुदरती आफत के दौरान राहत पहुंचाई जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी की अहम झलक उस वक्त नज़र आई जब कोविड-19 बहरान के दौरान भारत ने अपनी इंसानियत मरकूज सिफारतकारी के तौर पर वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज़ किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक़वामे मुत्तहिदा के 2 इदारों को 30,12,00,000 से ज़्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तिजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए ज़मीर रज़वी।
1: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क़ियादत वाली तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرنات یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شوز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی

मुल्युकियां कोशिरी नाथिया कलाम करो पेश। सदाकार गुलाम महुद्दीन बलपुर सैथी यम नश बोजो आगाजस मज कलाम रसूल मीर समन मोहतरम तह पाओ चतस जी कलाम सदाबंद कोर्मुत 30 सितंबर 1977 ईस्वी मज।

पार कर दन मुश्किलाश दिल की शुद्ध चारों राह चार कर दन मुश्किलाश सदिया सहलस्त बाहर कस गिरफ्तन दोस्ती ले चू पैवंद कर दी बाज गश्तन मुश्किलस अज आम दिल भर अलहम।

0: تُہۍ ٲسوٕ کینٛہہ کٲشِر نعت یا قوالیہ بوزان؟ سدا کر أسۍ غلام محی الدیٖن بلپوٗرِ تہٕ سۭتی سٲنِس دوٚیمِس سیلانَس پرٛٲرِو. یہ آکاش وانی کا سری نگر سٹیشن ہے، میڈیم کے علاوہ ایف ایم ٹو پر 11 بج رہے ہیں. آئیے آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی میں خبریں سماعت کرتے ہیں.
1: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں ارون کمار. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी.
2: भारत सरकार

0: शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय

0: उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे

0: कर जाएं। हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहां परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहां लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस

0: फार्मर को रोजगार मिलता है, तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है, पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भारत के ज्ञान श्रद्धा का भाव नहीं था, वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के

लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंसर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन की आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा और न केवल भारत के प्रति, अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी।

0: इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा,

0: आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ

0: विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी। भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में

0: भारत जब विकसित होगा तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसे भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: समय ने अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से ये खुसूसी लाइव ब्रॉडकास्ट समाप्त कर रहे थे। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। स्टूडियोज़ की घड़ियों में शब के 11:45 हुए हैं। इसके साथ ही हमारी आज की ये मजलिस अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात के प्रोग्राम लिए सुबह 6:28 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मेज़बान आमिर अशरफ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। शब बखैर। जय हिंद।

0: ये गीत था फिल्म रात और दिन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म साजन से।
1: रेशम की डोरी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का

0: निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सुयू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

नज़्में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। मौसम सुहाना हो और वीकेंड साथ हो तो हर पल में एक अलग ही मिठास खुल जाती है, दिल बेवजह मुस्कुराने लगता है और जिंदगी कुछ और हसीन लगने लगती है।

ओ सनम, बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे। वक्त चाहे कितनी ही करवटें बदले, जिंदगी हमें कितने ही इम्तिहानों से गुजारे, मगर हमारे बीच का अपनापन कभी कम ना हो। हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू हो और हर शाम तेरी बातों की मिठास मिठल जाए। आपने सुना त्रिशूल फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

तकरारें रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि अगर उनमें अपनापन और समझ हो तो वही रिश्ते को और गहरा बना देती हैं। रूठना भी एक एहसास है और मनाना भी एक प्यार भरा इजहार। आखिर मोहब्बत का मजा ही क्या अगर कभी कोई शिकायत ना हो और उसे दूर करने की मीठी सी कोशिश ना हो। लव स्टोरी फिल्म का गाना आपने सुना था, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

तुम्हारी कसम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद तक्षी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 22 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आपने सुना चरित्रहीन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। जी हाँ, दिल से दिल मिलने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हर मुलाकात यूं ही नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त की किताब में पहले से लिखे हुए लगते हैं। कभी किसी की बात में अपनापन मिलता है, कभी उसकी खामोशी भी अपनी सी लगती है। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, बिना ज्यादा कहे एहसास बढ़ने लगते हैं, तो लगता है कि इस जुड़ाव के पीछे कोई अनदेखा सा कारण है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में भी खास बन जाते हैं और उनकी मौजूदगी दिल को सुकून देने लगती है।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसमें संगीत दिया। रिश्ता ऐसा हो जिसमें दिखावा ना हो, बस अपनापन हो, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलें और साथ होने का एहसास हर पल दिल को छूता रहे।

दूरियां फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। तुम्हारे आने के बाद जाना कि कुछ लोगों की मौजूदगी जिंदगी को बदल नहीं देती बल्कि उसे एक नया अर्थ दे देती है। अब हर खुशी थोड़ी और खूबसूरत लगती है और हर पल में एक अपनापन सा महसूस होता है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 20 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री

0: भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में डीआरडीओ की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, "The growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation." He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisations, or DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex, during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media at a program in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said, "People are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border." The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: Jameen handover karne ka kaam kar diya.
3: The work of

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

जन्म जन्म के फेरे। इस फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एसएन त्रिपाठी ने। ये मीठी तान आज भी कानों में पड़ते ही दिल को सुकून दे जाती है, जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद हाल पूछने आ गया हो। पुराने गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जज्बातों का खजाना है, जो हर दौर में दिलों को जोड़ते रहते हैं।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। पुराने गीतों की मीठी तान दिल के किसी कोने को छू जाती है। इनमें शोर नहीं है न दिखावा है, बस सादगी, एहसास और मोहब्बत की खुशबू। कभी किसी सुर में चांदनी रात उतर आती है तो कभी किसी धुन में बिछड़ने का दर्द। उन गीतों को सुनकर लगता है जैसे बीते हुए लम्हे फिर से मुस्कुरा उठे हों और यादों की महफिल सज गई हो।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। पुराने गीत की दर्द भरी पुकार आज भी दिल के तार छेड़ जाती है। इन सुरों में बिछड़ने की कसक है, इंतजार की बेचैनी है और अधूरी मोहब्बत की कहानी है। जब कोई पुरानी धुन हवाओं में खुलती है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ खड़े होते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ नम आंखों के साथ।

अजीब बस शुक्रिया फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

वक्त हुआ है 1:27, वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़ी बहन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया हुसन लाल भगतराम ने।

परवरिश फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया दत्ताराम वाटकर ने। अपने जज्बात बयान करने का सबसे सीधा और खूबसूरत जरिया ये पुराने गाने हैं। जो बातें कभी लफ्जों में नहीं कही जा सकी, उन्हें इन गीतों ने सुरों में ढालकर दिल तक पहुंचा दिया। कभी मोहब्बत का इजहार बनकर, कभी इंतजार की आहट बनकर, तो कभी जुदाई की कसक बनकर, ये गाने हर एहसास को आवाज दे देते हैं।

एक सपेरा एक लुटेरा, रफी की आवाज में आपने गीत सुना। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया उषा खन्ना ने। कितना दर्द छलकता है इन गीतों में, जैसे किसी ने अपने दिल की सारी कसक सुरों में पिरो दी हो। कहीं बिछड़ने का गम है, कहीं अधूरी मोहब्बत की टीस, तो कहीं किसी के इंतजार में गुजरती लंबी रातों की दास्तान।

मतारी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बड़ी बड़ी बातों को कितनी आसानी से कह दिया करते हैं ये पुराने गाने। जो बातें कभी किताबों में समझ नहीं आती वो दो चार पंक्तियों में दिल तक उतर जाती है। मोहब्बत हो, इंतजार हो, जुदाई हो या जिंदगी का कोई फलसफा, पुराने गीत बिना शोर किए गहरी बात कह जाते हैं।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। जी हाँ, अल्फाज सादे होते हैं मगर मायने बहुत गहरे। यही वजह है कि बरसों बाद भी इन्हें सुने तो लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े सलीके से कह रहा हो। पुराने गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसासों की ऐसी जुबान है जो हर दौर में समझी जाती है और जाती रहेगी।

बादल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। हल्के फुल्के दिल को छू लेने वाले पुराने गाने जिंदगी की भागदौड़ में एक मीठी सी राहत जैसे लगते हैं। ना इनमें शोर होता है ना बनावटीपन, बस सादे अल्फाज, मधुर धुने और सच्चे एहसास।

0: जबक फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

तरह शाम का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को

0: कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकीमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथान संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO, Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the Dr. APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defence technologies. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari informed the media at a programme in Kolkata yesterday. Mr. Adhikari said people are giving their lands for fencing along the Indo-Bangladesh border. The Chief Minister said the land transfer process is ongoing and described the project as a matter of national security.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: The West Bengal government has assured special support for farmers in the agriculture sector in North Bengal with particular emphasis on potato and tea cultivation. State Minister for Agriculture and Agri-Marketing, Rural Development and Panchayati Raj, Dilip Ghosh, said this while addressing the Kanchenjunga Agripreneurs Meet in Siliguri. He said the government will give special attention to the welfare of farmers engaged in potato and tea production in the region. External Affairs Ministry has summoned Shadow Affairs of the United States, Jason Neitz, and launched a strong protest regarding

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

चितचोर फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और यीशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुरमई हो, हवाओं में नमी खुली हो और कहीं दूर से कोई मधुर धुन कानों में उतर आए, ऐसे में दिल चाहता है कि कोई अपना पास आकर बैठ जाए, दूरियों के सारे फासले मिट जाएं और खामोशियों में भी मुलाकातों का एहसास मिलने लगे।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, फिल्म से आपने गाना सुना। हेमलता की आवाज में रविंद्र जैन ने इसको लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। जिंदगी की धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर प्यार की छांव साथ हो तो सफर आसान लगने लगता है। अपनापन, विश्वास और स्नेह की ये छांव यूं ही बनी रहे, यही हर रिश्ते की सबसे खूबसूरत दुआ है।

सौदागर फिल्म का गाना आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत दिया रविंद्र जैन ने। फूलों की महक हो, चांदनी की नरमी हो या किसी की सादगी में छिपी रौनक, दिल हर उस एहसास की ओर खिंच जाता है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दे।

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, जैसे कोई मीठा सा ख्याल हर पल साथ चलता हो। हवा भी कुछ अलग लगती है, मौसम भी सुहाना लगता है और हर छोटी सी बात में एक अनजानी सी खुशी झलकती है। शायद दिल ने किसी खूबसूरत एहसास को अपना लिया है, तभी तो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।

वक्त हुआ है 2:42 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गजल सुनी। जगजीत सिंह की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हें देखकर लगा जैसे किसी लंबे सफर के बाद मन को एक सुकून भरा ठिकाना मिल गया हो। अचानक सब कुछ थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा हो। हवाएं, मौसम और वो पल जो अब तक बस यूं ही गुजर जाया करते थे, ऐसा लगा जैसे दिल के किसी कोने में छिपी एक पुरानी धुन फिर से बज उठी हो और उसकी मिठास देर तक साथ बनी हुई हो।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मीर तकी मीर ने और इसका संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना गोयल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट यू 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर

0: अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscapes across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th August. External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels.

दिल तक पहुंच जाती हैं। तो आइए आज की इस शांत रात में कुछ बातें करते हैं, कुछ यादों को छुएंगे और कुछ पलों को बस महसूस करेंगे।

नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, शोर और जिम्मेदारियों के बाद अब वक्त है कुछ पल अपने लिए चुरा लेने का। जी हाँ, ये वक्त है कार्यक्रम हमराही का और मैं हूँ आपके साथ आज रात की हमसफर अर्चना गोयल। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात की ये खामोशी भी अजीब होती है, दिन में जो बातें सुनाई नहीं देती वो रात के सन्नाटे में धीरे से

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म महबूब की मेहंदी से। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। दिल सवाल करता है, रात जवाब देती है। कई लोग इस वक्त अपने घरों में होंगे, कोई नींद के आगोश में, कोई किताबों के साथ तो कोई किसी की यादों के साथ, और कोई सिर्फ खुद के साथ। आज अगर आपके मन में कोई अधूरी बात है तो उसे थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए। ये रात है ना, उसे संभाल लेगी।

दोस्तों, रात हमें सिखाती है कि हर अंधेरा डरावना नहीं होता। कुछ अंधेरे सुकून भी देते हैं, जैसे आसमान के सितारे दिन में नहीं दिखते, वैसे ही कई बार हमारी ताकत भी मुश्किल समय में ही नजर आती है। एक छोटी सी बात हर दिन पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खत्म होकर हमें कुछ सिखा जाए, ये जरूरी है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने धरती फिल्म का गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:28 और 57 सेकेंड।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना, फिल्म थी बेटी। और अब कुछ पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात के लिए। खामोशियों में भी आवाजें होती हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए। रात ने पूछा, क्यों जाग रहे हो? हमने कहा, कुछ सपने अभी बाकी हैं, जो बातें दिन में न कर सके उन्हें रात ने चांद को सौंप दिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। हर प्यार को शब्द नहीं मिलते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बातें कम एहसास ज्यादा होते हैं। वो हर दिन हाल पूछना नहीं लेकिन हर दिन याद करना होता है। वो साथ चलना नहीं लेकिन दूर रहकर भी साथ निभाना होता है। और शायद यही सबसे शांत और सबसे गहरी मोहब्बत होती है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी कहानी में आते हैं लेकिन मंजिल नहीं बनते, फिर भी उनकी जगह कोई नहीं लेता। और अजीब बात यह है कि खामोश मोहब्बत शिकायत नहीं करती, वो बस दुआ बन जाती है। जहां भी रहो, खुश रहो, शायद यही सबसे सच्चा रिश्ता होता है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत था फिल्म शोर से। रात और मोहब्बत का रिश्ता पुराना है, दिन में लोग मिलते हैं, रात में यादें। कई लोग इस वक्त शायद किसी की प्रोफाइल नहीं बल्कि उनकी यादें देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर वो साथ होता तो ये रात कुछ और होती। वाकई दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते।

धीरे धीरे इस सफर को यहीं रोकते हैं। आज की रात अपने मन को थोड़ा हल्का कीजिए, पुरानी बातों को माफ कीजिए और आने वाले कल पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। अगर किसी की याद आई है तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हर याद किसी खूबसूरत पल का सबूत होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामूहिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतुंग अंकिमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोनथन संगी हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्व

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 4:11 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार, एक नए दिन की पहली सुबह के साथ आपका स्वागत है। रात की चुप्पी अब धीरे धीरे विदा ले रही है और आसमान पर उजाले की एक पतली रेखा दिखाई देने लगी है। ये समय है ठहर कर अपने भीतर झांकने का और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने का। तो शुरुआत करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। आज की भोर की बेला सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और मुस्कुराहट भी लाई है। इस उम्मीद विश्वास में अगर ईश्वर की प्रार्थना भी शामिल हो जाए तो क्या बात है। सुनते हैं भक्ति से भरा गीत।

कभी महसूस किया है सुबह की हवा कुछ अलग होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक सुकून होता है। सुबह हमें सिखाती है कि हर दिन नया हो सकता है। पेड़ हर दिन नई हवा देते हैं, सूरज हर दिन नई रोशनी देता है, तो क्यों ना हम भी अपने मन में नई सोच क्यों ना लाएं।

दोस्तों, कई बार हम जीवन में बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुबह हमें याद दिलाती है कि खुशी छोटी छोटी चीजों में भी होती है। एक कप चाय, खिड़की से आती हवा, घर वालों की मुस्कान और ये एहसास कि हम एक और नया दिन देख पा रहे हैं। जो व्यक्ति हर सुबह उम्मीद के साथ उठता है, उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। दोस्तों, अगर मन में कोई बोझ हो तो सुबह उसे थोड़ा हल्का कर लीजिए। हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता, लेकिन हर सुबह हमें उसे देखने का नया नजरिया देती है। आज किसी अपने को एक प्यारी सी बात कहिए, किसी का हाल पूछिए या खुद के लिए 5 मिनट निकालिए। कभी कभी सबसे जरूरी मुलाकात खुद से होती है।

दोस्तों, जब सुबह होती है तो मन भी शांत होने लगता है। 2 मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला पल है उसके लिए विश्वास। और यही विश्वास जीवन को

वह होती है तो मन भी शांत होने लगता है। 2 मिनट आंखें बंद करके बस इतना कहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला पल है उसके लिए विश्वास। और यही विश्वास जीवन को हल्का बनाता है।

विचार तय करेंगे। अगर मन में कोई अधूरापन है तो उसे आज पूरा करने की शुरुआत कीजिए। अगर कोई सपना रुका है तो आज उसे फिर आवाज दीजिए। याद रखिए, सूरज हर दिन इसलिए नहीं निकलता कि दिन बदल गया, वो इसलिए निकलता है कि हम बदल सकें।

दोस्तों, दिन भर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन क्या आप खुद से मिले हैं कभी? सुबह का समय यही मौका देता है, कुछ पल अपने साथ बैठिए, सोचिए क्या चीज आपको खुशी देती है, क्या चीज आपको थका देती है। मन की सफाई भी उतनी जरूरी है जितनी घर की। आज का विचार है कि धीरे चलने वाला इंसान भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस सुबह की ताजगी को अपने साथ रखिए। आज का दिन मुस्कुराकर शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और की मुस्कुराहट की वजह बन सकती है। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल, आपसे फिर मुलाकात होगी भोर सुहानी के अगले सफर में आपसे कुछ देर बाद 5:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।